0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

प्राय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज शिवस्तोत्रम। टाइटल इज विल्वाष्टकम, संग बाय शिव अरविंद राजगोपालन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रय

नमः ओम भ्राजिष्णवे नमः ओम भोजनाय नमः ओम भोक्त्रे नमः ओम भिक्षाभुजे नमः ओम भोजनप्रियाय नमः ओम भूतिमयाय नमः।

नमः, ओम ईश्वराय नमः, ओम कामभुवे नमः, ओम कामदाय नमः, ओम अचिंत्याय नमः, ओम किरीटिने नमः, ओम कौशिकाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम कुशलाय नमः।

धाराय ओम सिंधराय नमः ओम स्वर्णदाय नमः ओम सिद्धांतवल्लभाय नमः ओम स्वर्णसिद्धिदाय नमः।

अभिप्रयञ्चोदानावामिमानाहोताराज्योतिःप्रदिशा दिशन्ता।

0: நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த் கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: சப் குர்சி மே பேட்டே ஹுவே வோ தீபாவளிக்கு கடே ஹே பாய், या स्टेज में बैठा हुआ भी वही घड़ा है। ये नहीं समझ लेना कि कुर्सी में बैठे हुए सब घड़े हैं, ये स्टेज में बैठा हुआ भी वही घड़ा ही है। ये घड़ा ही बक बक कर रहा है, बोल रहा है। घड़ा बोलता है वो। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी दिग्विजय के लिए ये निकले थे और भ्रमण करने के क्रम में वह पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारा पृथ्वी माने भारत भूमि को वह पैदल यात्रा करते हुए अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। निकले और सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर में सर्वज्ञ पीठ पर आसीन हो गए। सर्वज्ञ और जगतगुरु आचार्य के पद पर विभूषित हो गए। वहां से घूमते हुए बद्री केदार की यात्रा किया। बद्रीनाथ में पहुंचकर बद्रीनाथ मंदिर का उद्धार किया। ये अभी जो बद्रीनाथ मंदिर है वह शंकराचार्य जी का ही देन है। आज से 1250 वर्ष पहले नास्तिकों ने उस मंदिर को तोड़कर बद्री विशाल भगवान के मूर्ति को अलकनंदा में फेंक दिया था। वहां कोई मंदिर का नाम निशान ही नहीं था। भगवान शंकराचार्य जी को भगवान नारायण ने कहा कि मेरी अवस्था यह है, तुम वेद उद्धारक हो, तुम वेद उद्धारक हो, तो वेद सम्मत मेरा विग्रह यहां नदी में पड़ा हुआ है और मेरा भी उद्धार करो। भगवान बद्री विशाल नारायण ने शंकराचार्य जी को कहा और शंकराचार्य जी पहुंच गए ठेठ हिमालय और वहां जाकर खोजी किया, ध्यान लगाया तो अलकनंदा में भगवान नारायण की मूर्ति पड़ी हुई है। भगवान शंकराचार्य जी ने उस मूर्ति को निकाला, मूर्ति का उद्धार किया। नारायण का तो क्या उद्धार करना था, मूर्ति का ही उद्धार करना था और इसी के माध्यम से वैदिक धर्म का उद्धार करना है। और पुनः मंदिर बनाकर उन्होंने उनके प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उनके सारी पूजा आजा की व्यवस्था मिलाई। दक्षिण भारत से ही ब्राह्मण को बुलाया और उनकी पूजा का नियम बना दिया। बद्री विशाल आज भी वही परंपरा अनुसार दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ही महाबद्री विशाल के आजा मुख्य पूजा करते हैं, मुख्य भट्ट के रूप में पूजा करते हैं। वो परंपरा आज भी है। उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी बद्रीनाथ से केदारनाथ होते हुए आगे नेपाल पहुंच गए। नेपाल पूरे शाक्तों का और कापालिकों का देश था और शाक्त कापालिक इतनी जबरदस्त होते थे कि तंत्र मंत्र पर ही विश्वास करते थे और बड़े जबरदस्त तांत्रिक थे और शाक्त विशेष करके तांत्रिक ही होते हैं। शाक्त में दो भेद हैं, एक वाम मार्ग और दूसरा समयाचार, वामाचार समयाचार दक्षिण मार्ग। और जो सात्विक हैं वो दक्षिण मार्ग समयाचार और जो वाम है वो तामसिक है। तो वह लोग तंत्र सिद्धि करने के लिए भैरव और काली चामुंडा इत्यादि की उपासना करते हैं, तामसिक उपासना करते हैं, पंचमकार का आश्रय लेते हैं और अपनी उपासना सिद्धि करने के लिए नरबलि का प्रयोग करते हैं, तामसिक हैं वो। तो ऐसे ही जब शंकराचार्य जी नेपाल पहुंचे तो वहां पर भी पशुपति भगवान का नास्तिकों ने मंदिर तोड़ दिया और मूर्ति को फेंक दिया सरोवर में। भगवान पशुपति ने कहा कि मेरी ये अवस्था है, तुम वेद उद्धारक हो तो मेरा भी उद्धार करो, क्योंकि वेद का तब उद्धार माना जाएगा तो वेद सम्मत मूर्ति यज्ञ यागादि की प्रतिष्ठा हो, मंदिर वैदिक प्रक्रिया है, मूर्ति पूजा ये सनातन धर्म वैदिक है, भगवत विग्रह की आराधना ये वैदिक है। वेद उद्धार का तो यही प्रयोजन है कि वेद सम्मत समस्त प्रतीक और क्रियाएं वैदिक सम्मत ही होवे, यही वेद उद्धार का प्रयोजन है। तुम वेद उद्धारक हो, वेद सिद्धांत का प्रचारक हो तो मेरी ये अवस्था है तो तुम मेरा भी उद्धार करो। तो भगवान शंकराचार्य जी ने पशुपति भगवान के विग्रह को भी खोजा और निकाला और वहां पुनः प्रतिष्ठा की। तो उस समय वहां के तांत्रिकों ने भगवान शंकराचार्य जी को चुनौती दिया शास्त्रार्थ करने के लिए, उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है शास्त्रार्थ किया जाए और जो हारेगा वह उसके सिद्धांत को स्वीकार करेगा। शास्त्रार्थ में तो यही है, जो हारेगा वह उसके सिद्धांत को स्वीकार करेगा। शंकराचार्य जी यदि हार जाएंगे तो कापालिक और तांत्रिकों का सिद्धांत स्वीकार करेंगे, कपालिक तांत्रिक यदि हारेंगे तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए और उसने ये व्यवस्था मिलाई कि बीच में पर्दा रहेगा, हम दोनों के बीच में पर्दा रहेगा और पर्दे के एक तरफ तुम बैठना और पर्दे के दूसरी तरफ मैं बैठूंगा और जब हम प्रश्न करेंगे तो तुम उत्तर देना, तुम प्रश्न करोगे हम उत्तर देंगे, यही शास्त्रार्थ की प्रक्रिया है। जो उत्तर दे नहीं पाएगा यह माना जाएगा कि वह हार गया। शंकराचार्य जी स्वीकार कर गए, पर्दा लगाया गया, पर्दे के एक तरफ शंकराचार्य जी बैठे, पर्दे के दूसरी तरफ तांत्रिक बैठ गया। अब शास्त्रार्थ तो शुरू हो गया तो तांत्रिक ने क्या किया कि एक मिट्टी के घड़े को वहां रखा और अपने तंत्र शक्ति के द्वारा किसी प्रेतात्मा को उस घड़े के अंदर आवाहन करके रख दिया। घड़े के अंदर किसको? प्रेतात्मा, प्रेतात्मा को उस घड़े के अंदर आवाहन करके रख दी और तांत्रिक तो चला गया अपने मस्ती से, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है और शंकराचार्य जी के शास्त्रार्थ तो वही प्रेतात्मा कर रहा है। ले जी शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, वो उत्तर दे रहा है, वो प्रश्न करता है, शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, कई दिन तक चल रहा है। तो बड़ा आश्चर्य लगा शंकराचार्य जी को, ये क्या बात है, वो खाना खाने भी नहीं जाता है, नहाने धोने को भी नहीं जा रहा है, लघुशंका भी नहीं कर रहा है, क्या बात है ये। कुतूहलता शंकराचार्य जी के मन में हुई तो शंकराचार्य जी ने पर्दा उठाकर देखा तो वहां कोई तांत्रिक नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, एक मिट्टी का घड़ा रखा है और वो मिट्टी का घड़ा जवाब दिया जा रहा है, भाई उत्तर दिया जा रहा है। और क्योंकि जब पर्दा उठा के देखा तो वह घड़े से प्रेतात्मा भाग गया। देखो असली सन्यासी के सामने प्रेतात्मा उपस्थित नहीं हो सकता है, प्रेतात्मा का प्रभाव, भूतों का प्रभाव असली सन्यासी के सामने वो खड़े नहीं हो सकते, वो छाया, वो छाया वहां उपस्थित हो ही नहीं सकता है। तो शंकराचार्य जी ने जैसे देखा तो घड़े में से प्रेतात्मा भाग गया। तो शंकराचार्य जी फिर उस कापाली को खोजने लगे, कहां गया तू? तो फिर बाद में आया, तो क्या हुआ, तो क्या चला गया? तो बोले मेरे जो तंत्र है तुम उसी के साथ परास्त हुए जा रहे हो। बोले नहीं, तुमने कपट किया, छल किया है, तुम सामने आमने सामने बात करो, अब पर्दा हटाकर शास्त्रार्थ करते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसने स्वीकार कर लिया हार, अपने हार को स्वीकार कर लिया। तो ये श्लोक से मुझे वह शंकराचार्य जी के वो दृष्टांत याद आ गया, घड़े के अंदर से प्रेतात्मा बोल रहा है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि कुर्सी में बैठे हुए सारे के सारे घड़े के अंदर प्रेतात्मा ही है, ये नहीं समझ लेना, मतलब ये भी कोई घड़े से कम नहीं है। नाना छिद्र घट, वो शंकराचार्य जी कह रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं, अनेक छिद्रों से युक्त हुआ हुआ घड़ा। एक घट शब्द का अर्थ क्या है पता है? घट इति घट, कोई इसको बना देवे तब ये बनता है, अपने आप नहीं बनता है। जैसे मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बनता है, कोई बनाने वाला हो वो बनावे, आकार और प्रकार देवे, तब वह घट बनता है। घटनात् घट, संगठन करके बनाया गया हुआ है, इसीलिए उसको घट कहते हैं। ये शरीर भी किसी के द्वारा बनाया गया है, इसमें जो मसाला प्रयोग किया गया है वह तो पंचमहाभूतों का है, पंचमहाभूतों का मसाला इसमें प्रयोग किया है। 50% मिट्टी का मसाला प्रयोग किया गया है, कितना प्रतिशत? 50%। ये मिस्त्री लोग बनाते हैं ना, घर बनाते हैं तो उसमें कई चीज प्रयोग करते हैं, रेत ढलान करनी हो, आरसीसी ढलान करनी हो तो उसमें कई चीज का प्रयोग होता है, रेत का प्रयोग होता है, कंक्रीट का, गिट्टी का प्रयोग होता है, और साथ में सीमेंट का प्रयोग होता है, फिर पानी का प्रयोग होता है। तो उसकी फॉर्मूला है, प्लास्टर करने का जो मसाला है वह सीमेंट कितना और उस अनुपात में रेत कितना, और ढलान करनी हो तो सीमेंट कितना, रेत कितना और कंक्रीट कितना, इसका एक अनुपात हुआ हुआ है। कहते हैं हम लोग आश्रम में कहीं बनाते हैं तो ठेकेदार और मिस्त्री कहता है, महाराज प्लास्टर करने के लिए तो 1-4 का मसाला बनाना पड़ता है। तो हम नहीं समझे कि 1-4 क्या होता है, तो उसने बताया 1 बोरा सीमेंट होगा तो 4 बोरा रेत डालना पड़ेगा, 4 बोरा रेत और 1 बोरा सीमेंट का जो मसाला बनेगा उसको, उसकी फॉर्मूला है उन लोगों की, 1-4 का मसाला है। और कहीं कहीं कहते हैं कुछ ठेकेदार 1-4 के मसाले की जगह 1-6 मसाला कर देते हैं, वो मसाला बचाने के लिए ठेकेदार, ये क्या करते हैं तो सीमेंट बचाते हैं ठेकेदार, ठेकेदार बदमाशी करते हैं। तो देखना महाराज 1-4 का मसाला बनाओगे तब आश्रम बढ़िया बनेगा। तो हम कहते हैं 1-4 का मसाला बनाना ठेकेदार, हाँ हाँ महाराज 1-4 का बनाते हैं, और हम इधर उधर हो जाते हैं, आश्रम का कर्मचारी इधर उधर हो जाता है, फिर ठेकेदार जाकर लेबर को कहता है 1-6 डालना हो, 1 बोरा सीमेंट डालना और 6 बोरा रेत डालना, बोल देता है बदमाश है। ढलान के लिए भी नियम है उसके है। तो ये जो बनाया गया है आपका शरीर का फॉर्मूला क्या है? प्लास्टर के मसाला तो 1-4 का फॉर्मूले से बना है, तो आपका ये घर ये घड़ा कौन से फॉर्मूले से बना है? इसमें 50% तो मिट्टी है, कितना प्रतिशत ये घड़े में, कितनी प्रतिशत मिट्टी है? कौन से घड़े में? कुर्सी में बैठे हुए घड़े में, एक कमीज और कुर्ता लगाकर बैठे हुए घड़े, एक घड़े को कमीज कुर्ता लगा दिया और कुछ भी नहीं है, है? और ये दिवाली के लिए बनाया गया घड़ा था, नाना छिद्र, क्योंकि पानी भर के, पानी के प्रयोजन से तो बनाया नहीं है ये घड़ा है, इसीलिए तो प्रयोग गलत हो रहा है ना। क्या गलत हो रहा है? दिवाली के दिया बत्ती जलाने के लिए बनाया गया यह घड़ा अनेक छिद्रों से युक्त किया गया था, और जो दिवाली के दीपक जलाने के लिए बनाया हुआ घड़ा है उस घड़े में कोई पानी भरकर लाना चाहे तो संभव होगा है? तो आप कर क्या रहे हो, यही कर रहे हो, दिवाली के लिए बनाया गया घड़े में अमृत भरना चाहते हो, ज्ञान अमृत, वो तो चू रहा है, छिद्र ही छिद्र। हम लोग क्या कर रहे हैं? दिया जलाने के लिए बनाए हुआ घड़े में अमृत भरना चाह रहे हैं, इसलिए तो अमृत टिकता नहीं है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान एक्षदा अमृत चक्षुम अमृतत्वमिच्छन् परांचिखानि व्यत्रिणत स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा। स्वयंभो परमात्मा ने इंद्रियों का स्वभाव ऐसा बनाया, इंद्रियों को बनाकर ऐसा हिंसित कर दिया कि यह स्वाभाविक रूप में बाहर जाना ही इनका स्वभाव बन गया है। परांचिखानि व्यत्रिणत तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मा पश्यति, तब ये इंद्रियां खाली बाहर तो आराम से दौड़ सकती है, बाहर के पदार्थों को तो आसान से जान सकती है। आज तक हम वही तो कर रहे हैं, बाहर के सारे पदार्थों को जान रहे हैं, दुनियादारी का इंफॉर्मेशन हम पूरे प्राप्त कर रहे हैं, न अंतरात्मा, परंतु अंदर रहने वाला जो दीपक है उसको हम नहीं जान रहे हैं। दीपक की रोशनी से जो बाहर की प्रकाश वस्तुएं हैं उनको तो हम जान रहे हैं, लेकिन वो बाहर की प्रकाश पदार्थ जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं वो खुद मूल प्रकाश से हम इतने अनभिज्ञ हैं कि करें क्या। तो ये दृष्टांत यहां दे रहे हैं, नाना छिद्र घटो दर स्थित मां, ये घड़ा किसी गड़वैया ने गड़ा है, ये है गुजराती में भजन सुना था गड़वैया, किसी गड़वैया ने गड़ा है, ये घड़ा गड़ा हुआ होने के कारण घड़ा, बनाया हुआ होने के कारण इसका नाम घड़ा। नाना छिद्र, आपको पता है इस घड़े में कितने छिद्र हैं? है 9, टोटल कितने थे? 11 थे। इस घड़े में टोटल 11 छिद्र थे, 2 छिद्र तो बाद में बंद हो गए, 1 छिद्र तो धाई ने बंद कर दिया, आपने बंद नहीं किया था है ना, 1 छिद्र तो धाई ने बंद कर दिया, नर्स ने बंद कर दिया, और दूसरा छिद्र वो अपने आप ही बंद हो गया, लेकिन बाकी बचे 9 छिद्र। पूरम एकादश द्वारम अजस्त्रम पत्र चेतसा, कठोपनिषद में 12 छिद्र वाला घड़ा बताया गया है, और गीता में इसको नवद्वारवती पूरे देही, नवद्वार पूरे देही, 9 छिद्र वाला है, 9 छिद्र ये ओपन है, खुले हैं, बंद नहीं है, और उन्हीं छिद्र 9 छिद्र जब खुले हुए हैं बंद नहीं है, उसी में ज्ञानामृत भर रहे हैं, कहां से चूता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कौन कौन से छिद्र से अमृत भरते हैं, प्रेमपुरी में भर के बाहर निकलते हैं सब चू जाता है, चू जाता है, पता नहीं कहां चू जाता है, सबसे पहले तो चप्पल में चूता है, जूता चप्पल के स्टैंड में पहुंचते ही वहां चू जाता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लिफ्ट में चू जाता है कि तू पहले कि मैं पहले है, वहीं चू जाता है, और थोड़ा बचा है फिर वहां चप्पल में, फिर घर में जाओ तो फिर ऑफिस में जाओ, फिर दुकान में जाओ, पता नहीं कहां शाम तक खाली, फिर जब सुबह उठते हैं तो खाली होता है, चलो प्रेमपुरी में भरने जाओ, फिर वही घड़ा लेके आते हैं, छिद्र बंद करके आते तो भर जाता, आज तक इतना देर नहीं लगता, इतना देर ना लगता। प्रश्न करते महाराज इतने वर्षों हो गया क्यों नहीं समझ में आ रहा है, चूहे जा रहा है क्या करोगे। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम, एक घड़ा ऐसा है, यही शरीर, इसमें 50% मिट्टी का प्रयोग हुआ है और बाकी 50% जल, तेज, वायु और आकाश का प्रयोग हुआ है और पूरा का पूरा 50% मिट्टी का प्रयोग है। इसीलिए दीपक बुझ जाने के बाद, दीपक जलता रहता है तब कुछ भी कहो, इसको देवदत्त कहो, यज्ञदत्त कहो, ब्राह्मण कहो, क्षत्रिय कहो, वैश्य कहो, स्त्री कहो, पुरुष कहो, गुरु कहो, चेला कहो, कुछ भी कह दो, जब तक दिया जल रहा है और जब दिया बुझ जाता है तो तुरंत इसका नाम पड़ जाता है पार्थिव। इसका नाम क्या पड़ता है? पार्थिव। ये कोई पार्थिव ये बाद में नाम रख दिया है ऐसा नहीं है। पार्थिव शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी भव पार्थिव। जैसे घड़े को भी अभी आप पूछोगे ये क्या है तो बोले पार्थिव है, किसका है तो बोले मिट्टी का है। इसलिए तो किसी ने कहा है ना, मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है। ये खिलौना खुद मिट्टी का है, नियति यह है कि वह खुद मिट्टी का है और इसकी समस्या यह है कि टूटने से यह हमेशा डरता है। अरे भाई, मिट्टी का खिलौना और टूटने से डरकर कब तक डरता रहेगा, कब तक बचता रहेगा? कभी न कभी तो मिट्टी का खिलौना टूटे ही जाएगा। खिलौना ही मिट्टी का है, वो फना होने से डर के करेगा क्या? फना तो होना ही है उसको, नियति है उसकी। इसीलिए किसी ने कहा है मिट्टी का खिलौना फना होने से डरता है, बड़ा होना चाहता है, बड़ों की बात सुनकर बड़ा होने से डरता है। किसी ने कहा है बड़ों की बात सुनता है बड़े प्रेम से, बड़ा होना चाहता है लेकिन बड़े होने से डरता है। कहीं बड़ा होने चला गया तो कहीं चौपट न हो जाए, इधर न छूट जाए। ज्ञानी होना चाहता है, ज्ञानी की बात सुनता है तो ज्ञानी होना चाहता है लेकिन डरता यह है कि कहीं ज्ञानी हो गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया सुखदेव की तरह और साड़ी और पैंट सब उतर गए तो क्या होगा मेरा? सुखदेव के तो पॉइंट शॉट थे नहीं भाई, दिगंबर थे। फिर बड़ों की बात सुनकर बड़ा होने से डरता है। जड़ भरत हो गया तो बोले अरे मैं जड़ हो गया तो फिर बचाता है अपने अध्यास को और रक्षा करने लग जाता है अध्यास की। यही चाहता है कि जगत की प्रतीति होते हुए, सारे व्यवहार होते हुए मैं जीवन मुक्त हो जाऊं। अरे बाबा, पहले हिम्मत करो, मारो लात, तोड़ो अध्यास, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बोध होने के बाद फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोध होने से पहले हिम्मत करना पड़ेगा। सभी ने हिम्मत किया है, सभी ने हिम्मत किया है। जिनको भी बोध हुआ महापुरुषों को, उन्होंने हिम्मत किया है, इस अध्यास को पहले लात मारा है तभी जाकर वह वो उनको बोध की प्राप्ति हुई है और उसके बाद फिर तो सहज हो जाता है। तो ये मिट्टी का खिलौना है। नाना छिद्र घटो दर स्थित महा दीप प्रभास्वरम। परमात्मा ने ये घड़े को, पंचभूतात्मक घड़े को, 9 छिद्र 12 11 छिद्र वाले इस घड़े को बनाकर और इसके अंदर वह स्वयं दीपक के रूप में, जलता हुआ दीपक के रूप में स्वयं बैठ गया, यानी जल रहा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ज्योति जैसा है, बत्ती की तरह है, घी के ज्योति जैसा, उसका ध्यान करो। अरे आत्मा कैसा है? ये तो अलग अलग है। ज्योति जैसा है, आत्मा ज्ञान जैसा है, आत्मा चैतन्य है। जिस किसी का भी ध्यान कर लो, कहां करोगे? नाना छिद्र घट उदर स्थित, या उदर उपलक्षण है, घड़े के अंदर यानी घटाकाश में, अंदर घड़े के अंदर जैसे हम लोग एक दिया जलाते हैं, वो दिया जलता रहता है, दिया दिखता नहीं, दिए की रोशनी उस छिद्र से बाहर आती है, दिया नहीं दिखता है। यदि घड़े के अंदर न रखो तो दिया स्पष्ट दिखेगा, घड़े के अंदर रखते हैं तो दिया दिखता नहीं लेकिन रोशनी बाहर आता है। अभी भी यही हो रहा है, इस घड़े के अंदर वह आत्म ज्योति जल रही है लेकिन वो दिया खुद नहीं दिख रहा है, आत्म ज्योति नहीं दिख रही है, उसकी रोशनी इन इंद्रिय रूपी छिद्रों से बाहर निकली जा रही है और वो प्रकाश रोशनी पदार्थों को प्रकाशित कर रही है। इस श्लोक को और पूरा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Sirappuli Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Nayanmar ki kahani, jinka naam Chirappuliyar hai. Mahan Bhakt Trigyan Sambandhar ne apni ek kavita mein Kaveri ke tat par sthit Akur namak sthan ka varnan करते हुए कहा है, यह नगर मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ऐसी महिमा वाले नगर में एक ब्राह्मण कुल में चिरुपुलियार का जन्म हुआ। उनके जीवन का ध्येय था नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, यज्ञ की अग्नि में पुण्यकारी यज्ञों का अनुष्ठान करना, शिव भक्तों को भोजन कराना और उनका आदर सत्कार करना। चेक्किलर ने चिरुपुलियार को के निर्दोष त्यागपूर्ण जीवन का उल्लेख हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए किया है। पेरियपुराणम में असाधारण करिश्मे और चमत्कार करने वाले भक्तों की संख्या अत्यल्प है। चिरुपुलियार जैसे संत सामान्य जन जैसे ही दिखते हैं। वे दूसरों को भोजन कराने को अपने जीवन का परम कर्तव्य मानते हैं, तब उनमें और हम में क्या अंतर हो सकता है? दूसरों को अन्न प्रदान करना, भोजन खिलाना एक साधारण सामाजिक कार्य है, पर इसी को परम धर्म और जीवन का लक्ष्य बनाने वाले किसी विघ्न के कारण सेवा से मुंह नहीं मोड़ते। वे यह मानकर संतोष नहीं कर लेते कि जब तक हाथ में था सेवा की, अब संभव नहीं हो पा रहा तो क्या करें। इलयानकुड़ी मारर तथा चिरुपुलियार जैसे संत इसके अपवाद हैं। सेवा में आई बाधा को दूर करने का वे पूर्ण शक्ति से प्रयास करते हैं। यदि यह बाधा उनकी शक्ति की सीमा से परे है तो फिर भगवान द्वारा उत्पन्न की गई हो तो वे भी कर्तव्य निर्वाह करते हैं, अन्यथा अपने प्राणों का उत्सर्ग करने से हिचकिचाते भी नहीं। यह अंतर इन भक्तों को सामान्य जन से अलग करता है। इनकी जीवन शैली हम सबके लिए महान है, इनकी कोई अलग पहचान भी नहीं है। चिकिलियर जैसे सुधीजन भी ने पहचान

0: In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Komala Kannara Ganakandare Tai Bis Bisaya. विष विषय का प्रतीक है। विष क्या है? विषय का प्रतीक है। विषय, अच्छा, चंद्रमा क्या है? बुद्धि का प्रतीक है। विषय बुद्धिपूर्वक होशियारी पूर्वक सेवन करो तो विषय तुम्हारे लिए नुकसान नहीं कर सकता। जैसे विष पान करने पर भी मस्तक में सोम धारण करने के चलते भगवान शिव को कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसलिए किसी ने कहा ना, मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश है। मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश। बकरे ने मैं किया तो कटाया शीश है। बकरे ने मैं कहा तो कटाया शीश। मैना ने मैना कहा मोल भय दस बीस। मैना का तो मूल्य हो रहा है, सब आदर कर रहे, बड़ा प्रेम कर रहे, और बकरा बिना मतलब का म्या करता रहा, कट गया से। मैना भी म्या करती तो कोई पूछता उसको? लेकिन मैना को कोई काट के खाता है? मैं करने वाले को जिंदा कोई नहीं छोड़ता है। बकरी ही दाने वाली है ना, मैं करता के लिए तो यही ठीक है। शंभु भय जगदीश। सोम कलादर मौलौ कोमल घन कंदरे महामहषि। तीसरा संबोधन है महामहषि। मह माने प्रकाश, महामहषि माने महान प्रकाश स्वरूप। ये महामहषि का अर्थ तब पुष्पदंताचार्य जी ने तवैश्वर्यम यत्नादि यदुपरि विरिंची हरिरधा परिच्छेत्तुम याता। ज्योतिमय ज्योतिर्लिंग अग्निमय पुंज अग्निपुंज जो लिंग वहां प्रकट हुआ उसको पता लगाने के लिए ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु नीचे गए, पता लगा नहीं सके। उस अग्निमय लिंग का नाम महामहषि, महान प्रकाश स्वरूप, जाज्ज्वल्यमान प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्लिंग। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम महामहषि। ये अर्जुन, अग्नि में जो तेज है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, सूर्य में जो प्रकाश है, वो प्रकाश छोटा है और उसमें जो प्रकाश पहुंचा है वो मेरे से पहुंचा होने के कारण मैं महामहषि। तो शंकराचार्य कहते हैं कि हे शिवा, आप महामह है। महामह, मह माने प्रकाश। चौथा संबोधन है गिरिजानाथे। गिरिजा का पति स्वामी नाथ, हे गिरिजानाथ, हिमाल, पार्वती के पिता पर्वतराज हिमाल है ना, और नारद जी के कहने के बाद हिमाल ने कहा कि पार्वती किस विवाह

शादी शिव से ही करना है और हिमालय पर्वत शिव जी से अपनी कन्या से पाणि ग्रहण करने के लिए हजार अनुनय विनय करते रहे, शिव जी ने स्वीकार नहीं किया। अब शिव भगवान शिव पार्वती से शादी कर लेवे, इसके लिए कामदेव ने हजार कोशिश की, कामदेव भी सफल नहीं हुआ। लेकिन जब पार्वती ने विचार किया कि पिताजी के कहने से भी शिव राजी नहीं हुए, कामदेव के प्रयत्न से भी शिव राजी नहीं हुए, तब शिव को राजी तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तब पार्वती ने स्वयं तपस्या आरंभ की और उस पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव ने खुद ही वरण किया। शिव जी ने पार्वती को अपने आप ही वरण किया। इसलिए उमानाथ हो गए, गिरिजानाथ। स्वामिनी गिरिजानाथ मामक हृदयम निरंतरम रमताम। आप निरंतर मेरे हृदय में ही विचरण करें, मेरे हृदय को छोड़कर इधर उधर न भटके। मामक हृदयम निरंतरम रमताम। आगे फिर शंकराचार्य जी कहते हैं,

0: तयैव कृतकृत्यः या ये यौ यो भर्गम् वदति इच्छते सदार्चतः स्मरति। सा रसना। इसलिए तुलसीदास जी ने भी एक जगह लिख दिया है ना, भगवान का नाम स्मरण न करने वाली जो जिह्वा है वह धरती के बील में रहने वाले सर्प की तरह है। तुलसीदास जी ने कहा है जिह्वा दादुर केरी, वो जिह्वा को सर्प कहना चाहिए जिस जिह्वा से भगवान का स्मरण न हो। तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं वही जिह्वा असली जिह्वा है, सही रूप में जिह्वा है, जिस जिह्वा से भर्गम बदती, सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा भर्ग उसके गुणानुवाद का गान करता हो। तो सा रसना नहीं, सा रसना या रसना सा भर्गम वदति, वही जिह्वा का सार्थक है वो ना, जिस जिह्वा से परमात्मा के दिव्य गुणानुवाद का गान हो। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च तत्कथनम तत् प्रबोधनम अन्योन्य यत् प्रबोधनम। जिह्वा की सार्थकता मेथी के गोटे खाने के लिए नहीं है, मेथी का गोटा समझ गए ना, गुजराती लोग समझ गए, तुम लोग नहीं समझे। मेथी का पकौड़ा है, गोटा माने पकौड़ा है। जिह्वा की सार्थकता उसके लिए नहीं है। अपने रुचिपूर्वक विषय सेवन करना ही जिह्वा की सार्थकता नहीं है, ये तो सुखी चमड़ी और सुखा हड्डी मिल जाए तो कुत्ता भी समझेगा मैं कृतकृत्य हो गया। होगा कि नहीं बोलो, सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा मिल जाए तो कुत्ता भी कृतकृत्य मानेगा अपने को। तो फिर कुत्ते के जिह्वा में और तुम्हारे जिह्वा में अंतर क्या रहेगा? लेकिन कुत्ते का जिह्वा भर्गम न बदती, परमात्मा के दिव्य गुणानुवाद नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इसलिए उसके जिह्वा सार्थक नहीं है, उदरार्थक है। उसके जिह्वा क्या है? सार्थक नहीं है, उदरार्थक है। और तुम्हारी जिह्वा भी उदरार्थक ही हो गई तो क्या अंतर रह गया? हमारी जिह्वा भर्गम बदती, तभी जिह्वा सार्थक है। सारसना या के साथ अन्वय कर लेने, या भर्गम बदती सारसना सार्थकम। ते नयने, ये नयने जो नयन भर्गम इच्छते, भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करता है, भगवान के दिव्य अनेक जो रूप है अर्वाचीन रूप, उन अर्वाचीन रूपों का दर्शन करता है, तब उस नयनों का नेत्रों के सार्थकता है। भर्गम इच्छते अन्वय करना, तावेव करऊ, तुलसीदास जी ने भी कह दिया ना एक जगह, आंख से यदि परमात्मा के अर्वाचीन रूपों का दर्शन नहीं होता है तो वो आंख मयूर के पंख के समान है। तुलसीदास जी ने कह दिया सीधे, मयूर का पंख भी ऐसे देखो तो क्या आंख, बढ़िया आंख जैसी है, लेकिन वो किसका रूप दर्शन कर सकता है? तीसरा बताया, तावे व करो, वही हाथ सार्थक हैं जिन हाथों से भर्गम सदा अर्चतः। परमात्मा के अर्वाचीन रूपों का, विग्रहों का नित्य निरंतर सेवा करता हो, अर्चना करता हो, वही कर, वही हाथ की सार्थकता है। अन्यथा सैव कृत कृत्य, उसी का जीवन धन्य है। यो कृत कृत्य सैव, यो भर्गम सदा स्मरति सैव कृत कृत्यता। नित्य निरंतर जो भर्ग का अर्वाचीन रूप का स्मरण करता है चित्त से, वास्तव में उसी का जीवन सार्थक है। अन्यथा जीवन भी निरर्थक है, हाथ भी निरर्थक है, नेत्र भी निरर्थक है, और वाणी भी रसना भी निरर्थक है ना। भार्गम बदती सारसना, वही रसना सही रूप में रसना है, और नयन इच्छते वर्गम इच्छते वही सार्थक है। यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। यही तो भक्ति का भाव है, एक एक अंग से परमात्मा की अर्चना होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, या इन्हीं इंद्रियों से जो कुछ भी हो, इन साधनों से, वो सब का प्रयोजन केवल भर्ग की प्रसन्नता होनी चाहिए, उसी के लिए हो। ऐसे सुभाषित श्लोक तो बहुत से हैं, शास्त्र में भरा पड़ा है। शंकराचार्य जी और आगे कहते हैं, अति मृदुलौ मम चरणौ, अति कठिनं ते मनो भवानी स, इति विचिकित्सां संत्यज शिव, कथमासित गिरौ तथा वेशः। तथा आवेश, ठीक, वो संधि प्रवेश आवेश एक ही चीज है, पाठांतर है, अर्थ एक ही है, प्रवेश कहो या आवेश कहो, प्र उपसर्ग है, वेश प्रवेश, दो संबोधन है यहां। भवानी सह, भवानी के ईसा स्वामी, हे भवानी ईसा भवानी सा, दूसरा संबोधन है नीचे के लाइन में, शिवा कल्याण स्वरूप, हे भवानी सा हे शिवा, यदि विचिकित्साम आपके मन में, यदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं शिव जी के लिए, हे शिव हे भवानी सा, यदि आपके मन में ये संशय शंका विचिकित्सा शंका संशय विशेष चिकित्सा विशेष संशय हो क्या कैसी शंका कैसी संशय अति मृदुलौ मम चरणौ मेरा चरण बहुत कोमल है नरम है अब ये दुष्ट बार बार मुझे अपने हृदय में बुला रहा है और इसका हृदय पत्थर से भी बड़ा कठिन है मेरा चरण अति नरम है कोमल है और जो मुझे बुला रहा है कि मेरे हृदय में आओ मेरे हृदय में आओ और उसका हृदय बहुत कठोर है कठिन है अब ऐसे कोमल चरणों को लेकर उसके हृदय में मैं कैसे चल सकता हूं कैसे जाऊं और बुलाया जा रहा है हैं? इस आशंका से आप मेरे हृदय में न आ रहे हो तो ये शंका छोड़ दो हटा दो यही कारण है मेरे हृदय में न आने का कौन बोल रहे मेरे हृदय में रमण करने विचरण करने न आने का यही कारण है कौन सा कारण आप ये समझते होंगे कि मेरा चरण बहुत कोमल है इस दुष्ट का हृदय बहुत कठोर है अब मैं कैसे उसके हृदय में जाऊं ये समझकर आप मेरे हृदय में नहीं आ रहे होंगे यही बात है कि नहीं बोले तुमने ठीक कहा बात तो यही है तो फिर मैं शिवा हे शिवा हे भवानी सर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कथम आसीत गिरौ वेश तब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि नंगे पांव उन हिमालयों की चोटी में तुम भटके कैसे बोलो नंगे पांव से हिमालय के उन कठोर पत्थरों में जब आप विचरण कर सकते हो तो मेरा हृदय उस कठोर पत्थर जैसा तो नहीं है ये बात सही है कि मेरा हृदय थोड़ा कठोर होगा कठोर हुआ है क्योंकि मेरी मां जब मरी तो मैं मां के साथ मर नहीं सका वियोग सहन करके बैठ गया तो हृदय तो तब कठोर हुआ है ना कठोर नहीं होता तो मैं मां के साथ ही मर जाता बोलो आपका हृदय कठोर है कि नहीं बोलो नहीं तो मां मरी तो मां के साथ ही मर जाते आपका हृदय कठोर है कि नहीं पिताजी मरे तो क्या मरे तुम बाप मरा उन्हीं के साथ मर जाते ना नरम होता तो पितृवियोग सहन कर पाते कठोर था तभी पितृवियोग सहन करके बैठे हो और आगे बढ़ो तुम्हारा हृदय कठोर न होता पति मर के चला गया हम जिंदे रह पाते हैं? उसी कठोरता के चलते ही तो पति मर गया फिर भी हम जिंदे हैं हमारा हृदय नरम है कोमल है भावुक है आज के न्यूज में एक पेपर में एक न्यूज आया मैं पेपर पढ़ता हूं नहीं पढ़ता हूं ये बात नहीं है पढ़ता हूं पेपर न्यूज क्या आया एक घर में देवरानी और जेठानी थे हाँ देवरानी जेठानी हाँ जेठानी 80 वर्ष की ढोकरी देवरानी 70 वर्ष की है, तो 10 वर्ष का फर्क है। अचानक देवरानी मर गई, पेपर का न्यूज है आज, अचानक देवरानी मर गई। वही देवरानी उसकी सेवा कर रही थी बेचारी, वो मर गई। तो गांव वाले इष्ट मित्र सगे संबंधी आए तो औपचारिकता रोने लग जाते हैं ना, रोने लगे। तो वो जेठानी 80 वर्ष की बूढ़ी भी रोने लगी, रोते रोते मर गई हुई ऑन द स्पॉट। उसी समय जब देवरानी मरी, इस बात को उसने सुना और सब आकर रोने लगे, वो भी रोने लगी, तो रोते रोते मरी गई। तब तब दोनों का लाश एक ही साथ मरघट ले गए। ये राजस्थान की घटना, कितना भावुक होगी बेचारी, उसका वियोग सहन नहीं कर सकी। हृदय अली कठोर होता, हमारा होता, तो हम क्या मरते उससे? कितना भावुक हुई होगी, सोची होगी मुझे मेरी सेवा तो वही करती थी, वही चली गई, अब हाय मेरा ख्याल कौन रखेगा। शायद ये भावना उसके दिमाग में आई होगी, जो हो वो संवेदना सहन नहीं कर सकी। शंकराचार्य कहते हैं, हे शिवा, आप ये समझकर मेरे हृदय में आने में संकोच कर रहे हो, यानी डर रहे हो। किस बात को लेकर? मेरा चरण कोमल नरम है, इसका हृदय कठोर है, तो इसके हृदय में मैं कैसे विचरण करूं, कैसे जाऊं? यदि ये सोचकर नहीं आए हो तो हम आपसे पूछते हैं कि पहाड़ों के उन कंदराओं में, उन पत्थरों में आप चले कैसे, और यदि आप वहां चल सकते हो तो ये निश्चित है कि वो पत्थर जैसा तो मेरा हृदय नहीं है। तो आपको तो आना ही चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। यह अनुनय विनय है भगवान शिव के साथ शंकराचार्य जी का। आगे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, धैर्यांकुशेन निवृतम रवसादा कृष्य भक्ति श्रृंखलया पुरहर चरणालाने हृदयम हृदयम मदेवम बधान चिन यंत्री। यहां संबोधन है पुरहर, पुरम त्रिपुरम हरति इति पुरहर। पुरहर माने त्रिपुरासुर को जिन्होंने मारा, नष्ट किया, तो पुरहर। हे त्रिपुराहर, मैंने एक हाथी पाल रखा था, मेरे पास एक हाथी है, लेकिन वो हाथी अब, पहले तो बच्चा था, सीधा साधा था, बच्चा था, मैंने उसका नियंत्रण में रखा था, अब तो दिन प्रतिदिन वह बढ़ता गया बढ़ता गया, भरी जवानी में पहुंच गया, शरीर भी उसका बड़ा हो गया, ताकत भी और बढ़ गया, और शरीर और ताकत के बढ़ते उसके मस्तिष्क में मद भी बढ़ गया, तब ये उन्मद हो गया, उन्मद मद अधिक हो गया ना, उन्मद हो, उन्मद हो गया, मदेभम, मद से उन्मत्त हो गया यह आदमी। अब इसको नियंत्रण करने की कोशिश करता हूं, नियंत्रण नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आता है। कोशिश करता हूं पकड़ो, बांधो, पकड़ में नहीं आता है। आपसे अनुरोध है महाराज, धैर्यंकुशेन निवृतम रभसा कृष्य भक्ति श्रृंखलया, भक्ति रूपी जंजीर से उसको रभसा जबरदस्ती तुरंत ही, तुरंत, विलंब नहीं करना, नहीं तो बहुत नुकसान कर जाएगा ये, बहुत नुकसान करेगा। रभसा शीघ्रम भक्ति श्रृंखलया, भक्ति रूपी जंजीर से, पहले तो उसके सिर में जाकर बैठकर धैर्य अंकुशी न, लोहे का एक अंकुश होता है, मावत उसके सिर में बैठता है और मारता है, उसे चुभोता है, वो उन्मत्त हुए हुए हाथी को वो उसके चमड़ी में घुसा देता है, लोहे का इतना बड़ा, उसको अंकुश बोलते हैं, नहीं तो नियंत्रण नहीं होगा जब तक उसके फोफड़े में नहीं चुभेंगे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं महाराज ये उन्मत्त हो गया है, धैर्य रूपी अंकुश से पहले तो उस पर नियंत्रण में लो और भक्ति श्रृंखलया रभसा आकृष्य तुरंत भक्ति रूपी जंजीर से उसको बांध डालो। कहां ले जाकर बांधे? आपके चरण रूपी खूंटे के साथ बांधे, मेरा मन रूपी हाथी को धैर्य रूपी अंकुश का प्रयोग करके भक्ति रूपी जंजीर से उसको अपने चरण रूपी खूंटे के साथ बांध डालो, और इतनी से काम नहीं चलेगा महाराज। कभी कभी तो ये भक्ति जंजीर तोड़ भी सकता है, और कदाचित भक्ति जंजीर ये तोड़ने लग जाए फिर ये उन्मत्त तो होगा, तब क्या करो? चिन यंत्र ही ऐसा बाढ़ एक बनाओ, ऐसा कटघरा एक बनाओ, चिन यंत्र कि चैतन्य रूपी कटघड़े के अंदर उसको घेरो, भक्ति रूपी रस्सी टूट भी जाए तो भाग न पावे, बस तब ये न तुम्हारा नुकसान करेगा, न मेरा नुकसान करेगा, न किसी का नुकसान करेगा। अन्यथा ये मन रूपी हाथी, चित्त रूपी हाथी, मन रूपी हाथी समद मत से भर चुका है, ये कहीं धन मत से भरा हुआ है, कहीं पद मत से भरा हुआ है, कहीं गुण मत से भरा हुआ है, हैं? बोलो, यही तो मत है, उन्मत्त होने के यही तो माध्यम है। मेरे पास इतनी गाड़ी, मेरे पास इतने घर, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतनी फैक्ट्रियां, मेरे पास इतने नौकर चाकर, ये सब मन रूपी हाथी उन्मत्त होने के लक्षण हैं। मैं इतना विद्वान, मैं गुणवान, मैं रूपवान, ये जो उन्मत्तता है मन रूपे हाथी की, ये उन्मदता है, ये खुद का भी नुकसान करेगा और यही उन्माद अन्य का भी नुकसान कर सकता है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है महाराज, इस हाथी को पहले नियंत्रण में करो, भक्ति रूपी जंजीर से, धैर्य रूपी अंकुश से तुरंत इसको बांधकर आकृष्य खींच कर लाकर चरणालाने आपके चरण रूपी खूंटे के साथ है बांध डालो। किसको? हृदय मधेभम वदान चिन यंत्र, और इसको चिन यंत्र चैतन्य रूपी यंत्र के अंदर बंद कर दो। और क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई, सिर्फ कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Baudh ke char bhaag hai. वैभाषिक सोत्रांतिक योगाचार माध्यमिक, तो बौद्ध दर्शन के चार को मिलाकर छह दर्शन इसलिए नास्तिक कोटि में आते हैं क्योंकि इन्होंने वेद के प्रामाण्य को स्वीकारा नहीं है। इतना ही है। जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करके चलते हैं, अपनी बुद्धि अपनी अनुभूति अपनी युक्ति बार में लगाते हुए तो आस्तिक कहलाते, पर जो पहले अपनी बुद्धि दिमाग चलाते हैं और बाद में वेद का समर्थन लेते हैं उनको नास्तिक सबसे कहा है। तो छह नास्तिक कोटि में है और छह आस्तिक। आस्तिक कोटि में सर्वप्रथम न्याय वैशेषिक दर्शन है, सांख्य योग है और उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, ये बारह दर्शन कहलाते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी तो समझने की बात है। दर्शन शब्द का बहुत ही परिभाषा है, दो चार परिभाषा पर विचार करते हैं। दर्शन पर ही बोले तो दो चार घंटे हो जाए, एक ही व्युत्पत्ति लेते हैं। दृश्यते ज्ञायते अनेन दर्शनम, दृश्यते ज्ञायते अनेन इति दर्शन, जिसके द्वारा तत्व का जानकारी हो उसको दर्शन कहते हैं। इस व्युत्पत्ति से इंद्रियादि सिद्ध हुए। अब आप कहेंगे इंद्रियादि को कैसे हम जो है दर्शन कहें, भाई चक्षुरादि से सब दिखाई पड़ता, आंख से रूप देखते, कान से शब्दों को और व्याप्ति ज्ञान सम्मान का बोध होता है सादृश्य ज्ञान से उपमा का, तो ऐसी व्युत्पत्ति करने से दर्शन शब्द का अर्थ हुआ इंद्रियादि। वेदांत दर्शन में सबका अधिष्ठान ब्रह्मी है, इंद्रियादि भी ब्रह्म से अभिन्न है क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त चैतन्यातिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं। इदधिष्ठान तेन इंद्रियों का ब्रह्म होने से कोई आपत्ति नहीं, और यह किसी के गले न उतरता हो तो दूसरा व्युत्पत्ति किया है। दृश्यते ज्ञायते यद तद दर्शनम, जो देखा जाए जाना जाए जो अनुभव किया जाए वह दर्शन, इसको बोलते भावा व्युत्पत्ति। ये कहीं शब्द है व्युत्पत्ति वैचित्र्यात् अर्थ वैचित्र्यम, एक ही शब्द की हम जैसी व्युत्पत्ति करते हैं वैसा विलक्षण अर्थ निकल जाया करता है। सत्संग यही आपको लाभ होता है कि आप हर स्थिति को परिस्थिति को आप अच्छे ढंग से व्युत्पत्ति करके ग्रहण करते हैं, हर घटना को अच्छे ढंग से। यही व्युत्पत्ति समझने के लिए एक दृष्टांत में दिया करता हूं कि ऐसे ही सत्संग हो रहा था। सत्संग के बीच में एक बुढ़िया माता आई डंडे टेकती हुई। मां ने कहा पापी जी महाराज ओम नमो नारायणाय, बस सभा बिल्कुल सन्न हो गई। सबने कहा कुछ न कुछ दाल में काला होगा क्योंकि जैसी जिसकी दृष्टि वैसा ही वह समझता है। प्रवचन भी शुरू हुआ, महात्मा जी ने कहा धन्यवादार कुतरिया, बैठ गए नीचे बूढ़ी मां। सत्संग समापन के बाद साहस करके उसमें एक बड़ी बुजुर्ग प्रबुद्ध जाने मान अधिकारा संपन्न, क्योंकि सब साहस नहीं कर सकते पूछने का, ऐसे अपने आए गिरीश भाई है और जो सीनियर लोग आए, बोले मां जी एक प्रश्न पूछूं। मां ने कहा पूछो बेटा क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे जिज्ञासा है, आपने भरी सभा में महात्मा जी को पापी जी महाराज ओम नमो नारायणाय क्यों की? ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं। उस बूढ़ी मां ने इस बात को सुनने के बाद कहा कि अच्छी बात, तो ये बताओ कुछ व्याकरण न्याय पढ़ा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा तो सत्संग सुनता हूं, थोड़ा संस्कार है। उस बूढ़ी मां ने कहा देखो ये पा धातु है रक्षार्थ में, पा रक्षणे और पा पाने, पा रक्षणे से पाती शब्द बनता है और पा जो पाने हैं उससे पिबती बनता है, दुग्धम पिबती घृतम पिबती। इस महापुरुष ने शास्त्र के ज्ञान को अमृत को पी करके पाती संसार सागर सपना रक्षा कर लिया, इसलिए हमने कहा पापी। पापी शब्द बन जाता है दो धातुओं से, धातु द्वय से। वो व्यक्ति बड़ा चमत्कृत हुआ, बड़ा सुंदर मां ने अर्थ किया। अब वह आदमी गया महात्मा जी के पास, महाराज आपने भरी सभा में इस बूढ़ी मां को कुतरिया क्यों कहा, वो आपको पापी कहा? महात्मा ने कहा देखो भाई, कुतरिया में इतने शब्द उनको तोड़ो, कु मतलब कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जटेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण्यस्त चेतः। कुश का एकाक्षर व्याकरण कोश के अनुसार अर्थ हुआ कुलम, और कुल शब्द का भी किनारा भी होता है, नदी के किनारे कुलम बोलते हैं, कुलम पिपीति सती किनारा गिरना चाहता है। जब गंगा जी बहुत बाढ़ आती है तो बाढ़ से बोलते कुलम पिपीति सती, भाई अब अपनी बचाव कर लो कुटिया का, ये कुल किनारा गिरने वाला है। तो कुल शब्द का अर्थ कुल खानदान वंश भी होता है, कुल का अर्थ किनारा भी होता है। त्रिधातु संप्रवन तारणयु अर्थ में तो संधि कर दो तो कु दरिया बन गया। इस बूढ़ी मां ने अपने कुल को तार दिया, अपने पुत्र पौत्र सबको इसने इतना सुंदर वेदांत का उपदेश दिया कि सभी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। अब आपके मन में शंका होगी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो ये बिजनेस व्यापार मुंबई में रहना कैसे होगा, मन में होता होगा ना, ऐसा नहीं समझना। आत्मज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है, आत्मज्ञान संसार से आपको विमुख नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञानियों में से जनक महाराज का नाम लिया, केवल जनकादय, वो भी सदगृहस्थ थे सम्राट थे, और राजा को दुष्टों को दंडित भी करना पड़ता है, अच्छे को इनाम भी देना पड़ता है। तो आत्मज्ञान से जीवन जीने की कला उपलब्ध होती है, न कि ये जो है भगोड़ापन आता है। अर्जुन को भी जब भगवान ने आत्मज्ञान दिया तो अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मया च्युत हितोष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। पहले तो अर्जुन धनुष बाण को छोड़ करके भाग रहा था, पलायनवाद स्वीकार कर रहा था, पलायनवाद, ये जो है बड़ी भारी हिंसा है, लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, ये अच्छी बात नहीं है, ये मरने के बाद लोगों के पाप लगेगा, लोक में अपयश होगा, और सब हमारे ही जो है गुरु है दादा है मामा था वो सब चचेरे में मेरे लोग हैं, ये तो संग्राम ठीक नहीं। इतना नहीं, धर्म शास्त्र का दुहाई भी दिया कि आगे बल शंकर प्रजा हो जाएगी, संस्कार शून्य हो जाएंगे, बहुत सारे परिणामों को दिखाया। युद्ध के जो जो परिणाम हो सकते थे और होते हैं उन सारे परिणामों को श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान को बता दिया। परंतु भगवान ने जैसे ही उसको उपदेश दिया, गीता का प्रथम उपदेश सूत्र है अशोच्यानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को जुलाब दिया। जुलाब जानते हैं ना, पुराने जमाने में शरीर की शुद्धि के लिए ज्वरादि कोई रोग हो जाए तो जुलाब जमाल घोटा देते थे, उससे केवल रेचन क्रिया होती है, शरीर अंदर से साफ हो जाता। इसके बाद औषधि देते थे, तुरंत असर करता था और जैसे बीमारी दूर होती है। अब आजकल तो सीधा दवाई खाए जाओ, दूसरा तीसरा बीमारी शुरू हो जाता है, ये परंपरा पर्याय थी। तो भगवान ने अर्जुन को वही जमाल घोटा पिलाया, क्या कि प्रज्ञावादाश्च भाषसे, बात तो पंडितों की तरह करता है और इस शरीर को लेके शोक करता है। शरीर तो आज नहीं तो कल मिट्टी में मिलना ही है। बात रही आत्मा की, तो आत्मा तो चैतन्य स्वरूप अजर अमर है। नैनम चिन्नन सहस्त्राणी नैनम धाति भाव का, तो आखिर तू शोक किस लिए कर रहा? भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन के बुद्धिवाद पर प्रहार किया, इसके बाद उपदेश प्रारंभ किया। गीता उपदेश सुनने के बाद आत्मज्ञान जब हुआ तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और उसने संग्राम किया। संग्राम के बाद बहुत दिनों तक तो राज्य शासन भी किया। तो आत्मज्ञान से आपका ये जो जमा जमाया संसार है जिसको आप संजो सजा रहे हैं वो बिखरता नहीं बल्कि सुधरता है, उसमें निखार आता है। तो आत्मज्ञान हमें जीवन जीने की ये कला सिखाता है। तो जो दूसरी विपत्ति है दर्शन शब्द की, दृश्यते ज्ञायते यद तद दर्शनम, मतलब ब्रह्म जो अनुभव का विषय है, जो जाना जाता है, जो जानने योग्य वही ब्रह्म आत्म चैतन्य आत्मज्ञान, वह दर्शन है। तीसरी व्युत्पत्ति आप ऐसा भी कर सकते, सप्तमी व्युत्पत्ति दृश्यते यस्मिन तद ब्रह्मा। यस्मिन कार्ते जिसमें ये पूरा प्रपंच दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा, जिसमें स्पर्श आदि का ज्ञान हो रहा, जिसमें प्रीति भय आदि हो रहे, वह है ब्रह्मा। परम पूज्य सुनाम धन्य अखंडानंद महाराज के एक जगह लिखा मिथ्या की परिभाषा, बहुत संक्षिप्त सहज भाषा में, स्वाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। हालांकि अद्वैत सिद्धिकार ने 5 परिभाषाएं की, खंडकार ने 11 किया, चतुष्कार ने 16 परिभाषा किया कि मिथ्या शब्द क्या है, पर पूज्य स्वामी ने इतना सहज कहा कि स्वाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। बस जो स्व के अधिकरण में जिसकी प्रतीति हो, भासमानता, उसका नाम मिथ्या है। ये जो प्रपंच है ना, इस प्रपंच को भले ही हम समझने समझाने की भाषा में कह देते झूठा, पर झूठा नहीं कहना चाहिए, झूठा है भी नहीं। और संस्कृत के किसी भी वाङ्मय में झूठा शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक जगह इसका कटाक्ष भी किया कि प्रपंच को झूठा मान लिया जाए तो सूक्ति रूप्य और मोदकादि भक्षण में क्या अंतर। सीपी में जो चांदी दिखाई दे रहा है और जो आप थाली सजाकर भोजन करते हैं मोदक आदि, उन दोनों में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं, मिथ्या तो भी है। इसलिए मिथ्या शब्द की परिभाषा है जो पारमार्थिक सत्ता से भिन्न हो, जो त्रैकाल्य अबाध्य न हो, उसका नाम मिथ्या है। जो व्यवहारिक हो, काम चलाऊ हो, तो थोड़े दिन के लिए वो जो परिवर्तनशील उसका नाम मिथ्या है। तो स्वमतलब चैतन्य ब्रह्म उसी अधिकरण में पूरे प्रपंच की प्रतीति हो रही है। तो स्वाधिकरणे भासमानत्वम का मिथ्यार्थ है। तो जिस अधिकरण में ये पूरे प्रपंच का दर्शन हो, ज्ञान हो, विषय का अनुभव, उसको कहते दर्शन मतलब अधिष्ठान चैतन्य। अधिष्ठान चैतन्य में सारा प्रपंच आरोपित है। एक साधारण साधवी एक दिन सपना देखा। सपने में वो देख रहा कि मैं बड़ा भारी राजा बन गया, लोग चारों तरफ हमारी चल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सोने का सिंहासन है, चमर डुला रहे हैं, वाहवाही कर रहे, बड़ा खुश। थोड़े दिन के बाद देखा सपने में कि हमारे दस दस पुत्र हो गए, बड़ा यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गया। सपने बड़ा खुश हुआ, जैसी जगह वैसी वही छोटी सी दुकान में जाके व्यापार। अब उसकी आदत पड़ गई कि हर दिन सपने में जाए देखे। एक दिन संयोग से घर में कुछ डाकू आ गए। डाकुओं ने उस आदमी के पुत्र को मार दिया और सारा धन लूट के ले गए। पत्नी तो छाती पीट कर रोने लगी, हाय मेरा सब कुछ लूट गया, बेटा मारा गया, धन चला गया, अब मैं क्या करूं, उस भगवान को भी दिखाई नहीं दिया और कोई नहीं, वही बचा। छाती पीट कर रोने लगी। पर जो पति था बिल्कुल प्रसन्न, कोई चिंता नहीं। पत्नी को बहुत बुरा लगा, उसने कहा तुम्हारा पाषाण बद्र के समान हृदय है, जो जवान बेटा मारा गया, धन चला गया, तो रोता भी नहीं, कैसा आदमी। उसने कहा कि मैं रोऊं तो सही, पर बता किसके लिए रोऊं। कोई किसके लिए, अरे बेटे के लिए रोना चाहिए, धन के लिए रोना चाहिए, सारी दुनिया रोती है। उस आदमी ने कहा कि मैंने परसों सपना देखा, बड़ा भारी राजा हो गया, दस दस पुत्र थे, सिंहासन पर बैठा हुआ था, सब जगते ही लूट गया, तो उन स्वापनिक पुत्रों के लिए रोऊं, सोने के लिए कि ये जो एक बेटा के लिए। उसने कहा कि वो तो सपना था, उसके लिए क्या रोना है, और कोई रोने की बात है, सपना तो कुछ भी होता है, ये तो जागृत था, जीता जागता था बेटा। उस आदमी ने कहा देवी ये भी एक सपना ही है, वो चार घंटे का सपना था और ये 40 वर्ष के सपने हैं, अंतर इतना ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो उस ब्रह्माधिकरण में सारा प्रपंच की प्रतीति हो रही। आत्मज्योति हमारे शरीर से जुदा हो जाए तो आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते। जब तक आत्म चेतन हमारे शरीर में है तभी तक हम सारा व्यवहार करते हैं कि हमारे पिताजी हैं, गुरुजी हैं, माताजी हैं, पति पत्नी है। आत्म ज्योति की जुदा होते ही अधिष्ठान चैतन्य के, विशिष्ट चैतन्य के, ये शरीर स्व हो जाता है। इसलिए कहा कि यस्मिन दृश्यते भुज्यते इति तत् ब्रह्म दर्शनम्, जिसमें सारा प्रपंच भाषित हो रहा वही दर्शन वही ब्रह्म है। तो दर्शन शब्द का हमने दो चार व्युत्पत्ति किया, वैसी बहुत व्युत्पत्तियां होती है समय की सीमा को देखते हुए। तो जो दर्शन है, अब इस दर्शनों में सर्वप्रथम चारवाक दर्शन के स्थान आता है। तो चारवाक भी दर्शन संज्ञा को जो प्राप्त किया तो उसका भी कुछ रहस्य है। हमारे यहां के चारवाक में और पश्चिम जगत के चारवाक में बड़ा भारी अंतर है, एक नहीं समझना भाई। अपने यहां का चारवाक तो कहता है, कम से कम इतना तो कहता है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। चारवाक शब्द का अर्थ होता है अच्छा जिज्ञासा आपने किया। चारु वाको ये शांति चारवाका, चारु बहुत सुंदर, जो हम लोग गणपति भगवान के स्तर में कहते हैं ना, चारु फल भक्षणम, कपित चारु फल भक्षणम गजाननम के बाद, चारु बहुत सुंदर को, जिसकी बातें सुनने में, सुनने के बाद मनोराज्य करने में बड़ी अच्छी लगे, वे चारवाक कहलाते हैं। तो उनका जो दर्शन है कि ऋणम कृत्वा घृतम पे वे कहते हैं, चाहे ऋण लेना को पश्चिम से ऋण लेते जाओ, परंतु घृतम पिवेत, घी पी के शरीर को स्वस्थ रखो, ताकि मौका पड़ने पर शत्रुओं को भी देखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर धर्म का अनुष्ठान किया जाए। भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम्, इस शरीर के भस्म होने के बाद न कोई आता है न जाता है, ये तो अपना चारवाक कहता है कि शरीर ये धर्म का साधन है, इसके देह पाथी मोक्ष है, इससे अधिक कुछ भी नहीं, सब शरीर ही है, यही भोग यही मोक्ष, इसको बढ़िया स्वस्थ रखो। पर वो पश्चिम का चारवाक ऐसा नहीं कहता, वो तो बोलता है ऋणम कृत्वा असुराम पिबेत, हाँ अंतर है कि दोनों बताओ, वो बोले चाहे ऋण करना पड़े पर वो तो जरूर लेना, हाँ ये तो धर्म के साधन रूप से कहते ना शरीर को, अपने यहां भी कहा कि धर्म का ये शरीर साधन है, क्योंकि तो बिना शरीर के आप न धर्म कर सकते, न अर्थार्जन कर सकते, न मोक्ष की साधना कर सकते। तो चारवाक प्रथम दर्शन है, यह भी इसलिए दर्शन संज्ञा को प्राप्त हुआ, इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। जिस प्रकार से कोई मान लो देहात का किसान हो, अब उस किसान को समझाना है हमें वेदांत परमात्मा भगवान को, अब उसको बोलो जीव ब्रह्म ही अनापर, एक ब्रह्म में अधिष्ठान चैतन्य, सब झूठा मिथ्या, क्या समझेगा वो, तो उल्टा बहक जाएगा, फिसल जाएगा। उसको कहना पड़ेगा भाई प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान करके नया कपड़ा पहन लेना, ये शरीर ही भगवान का मंदिर है, और एक लोटा जल भगवान शंकर पर चढ़ा देना, वही परमात्मा है। धीरे धीरे दो चार साल तक जब वह किसान नहा धो करके भगवान शंकर पर जल चढ़ाता है, अपने आप जिज्ञासा होगी कि ब्रह्म तो अजर अमर है, ये पत्थर तो टूट फूट जाता है, ये कैसे ब्रह्म हो सकता। जब जिज्ञासा होगी तो अपने आप वह वेदांत के चिंतन में अग्रसर होगा। तो चारवाक दर्शन का पूर्व पीठिका है, अपने यहां भी वेदांत की पूर्व में जहां पर अधिकारी का विवेचन है वहां पर क्या कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय वान अधिकारी, चार अनुबंध है, अनुबंध सबको पता ही है, तो साधन चतुष्टय अधिकारी है, साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय का अर्थ है विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षा। तो षट संपत्ति तभी होगी जब आपका शरीर इंद्रियां स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ विचार होते हैं। अब शरीर रुग्ण है असमर्थ है तो आप अच्छी तरह से वेदांत का विचार नहीं कर सकते, उसके शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए अपने यहां वैदिक कालीन व्यवस्था थी कि शैशव्य व्यस्त विद्या नाम यौवने विशेष नाम वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम योगे नंति तनु तेजताम। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में वैदिक व्यवस्था का जिक्र किया, शैशव अवस्था में 1 से 25 वर्ष तक वेदाध्ययन आदि करना चाहिए, युवा अवस्था आने पर विषयों से बैराग के लिए गृहस्थाश्रम को अपना ले, जब विषय रस से मन बैराग हो जाए, सबको बैराग होता है, मैंने बहुतों से पूछा युवकों से, तो बैराग होने के बाद फिर वानप्रस्थ योगाभ्यास, और शरीर कैसे छोड़े तो योगे न अंते तनु त्यजताम, योग मतलब कि जीवात्मा का परमात्मा के साथ जो मिलन है, चिंतन है, इस प्रकार से शरीर को त्याग करे। क्योंकि कच्चे घड़ा पर जो लीख दिया जाता है वही पकाने पर अमीठ होता है, पकने के बाद वो फूट जाएगा। तो नारायण यह जो चार्वाक दर्शन है इसकी भी दर्शन पदवी तभी पड़ती है जब इसमें कुछ रहस्य आप शरीर को स्वस्थ रखे, निरोग रखे। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो जैन दर्शन आता है, उसका प्रधान है

ना बल्कि हर चीज को विचार के ऊपर आरूढ़ करके समझना। ऐसे बौद्ध आदि दर्शन आते हैं तो छह दर्शन के बाद तब जा करके अपना न्याय वैशेषिक सांख्य योग उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा और फिर आपका वेदांत दर्शन आता है। तो शेष जो बात है ना आपकी बारह दर्शन की, कल सीधे हम लोग द्वादश दर्शन पर ही संक्षिप्त से अवलोकन करेंगे। इसके बाद तब वेदांत सब पर विचार करेंगे, वेदांत है क्या, वेदांतम किसे कहते हैं। वेदांत विषय महिमा बतलाई गई है कि आसुक्ति आमृते नयेत कालम वेदांत चिंतया, जागने से सोने तक, जीवन से मौत तक वेदांत का चिंतन करे। वेदांत मतलब अपने आपा का, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसका बार बार अहर्निश चिंतन करना चाहिए। इसकी महिमा अनंत है। शतपथ ब्राह्मण में आया है एक मंत्र कि तद्यत यावत पृथ्वी अर्थम तदत पुण्यम भवति तावत स्वाध्याय न भवति। इस पृथ्वी को दान देने से जितना पुण्य होता है उससे तिगुना केवल वेदांत के स्वाध्याय श्रवण मात्र का फल है। दशीकार ने तो इससे भी आगे की बात कही कि बुद्धि पूर्वम कृतम पापम कृष्णम दहति वनिवत, जान बूझकर किया गया अपराध भी जो वेदांत का श्रवण करते हैं वैसे नष्ट हो जाता जैसे आग ईंधन के पहाड़ को राख कर देती है। तात्पर्य है कि आपने समझ लिया कि मैं तू आत्मा हूं, चैतन्य हूं, अधिष्ठान हूं, ये तो सब शरीर पर कल्पित है, तो आपने उससे अपना किनारा कर लिया। अब ना आपको पाप से संबंध, पुण्य से। जिस प्रकार कोई फैक्ट्री का मालिक हो, फैक्ट्री बहुत राग द्वेष, हजारों आदमी बेचारा विक्षित परेशान रहता व्यवस्था में, जिस दिन दूसरे को वसीयत लिख दिया उसके बाद कोई टेंशन नहीं, चाहे फैक्ट्री लॉस में जाए चाहे वह विकास करे। ऐसे आप जो अज्ञानावस्था में अपने को साढ़े तीन हाथ वाला देव अभिमान कर रहे हैं मैं हूं, वह अभिमान जैसे ही विशृंखलित हो जाता, विसर्जित हो जाता है, और आप जब भूमा अभिमान में आरूढ़ हो जाते हैं, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, मैं ब्रह्म चेतन आत्मा शरीर आदि नहीं, तो संसर्ग के विच्छेद होने के कारण आपको संसार का सारा अपराध आपके समान एक क्षण में जलकर राख हो जाता है। तो श्रवण की बड़ी महिमा है, शेष कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, हरि ओम शांति।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द फॉलोइंग इज अथर्वण वेद सौनक शाखा कांडम 2 सूक्त 4। थैंक यू।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

अयम् तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय

नमः ओम भ्राजिष्णवे नमः ओम भोजनाय नमः ओम भोक्त्रे नमः ओम भिक्षाभुजे नमः ओम भोजनप्रियाय नमः ओम भूतिमयाय नमः।

नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ कामभुवे नमः ॐ कामदाय नमः ॐ अचिन्त्याय नमः ॐ किरीटिने नमः ॐ कौशिकाय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ कुशलाय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, The next program is Parayana, Shiva Sahasranama in Mahabharata. Sage Upamanyu recites the 1008 names of Lord Shiva to Krishna. Presented by Karthik Ramachandran Sheshadri. Thank you. Om Namah Shivaya.

0: ஓம் நம சிவாய். டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர் ரேடியோ, தி சைஸ் ஆஃப் அவர் ஆடியோ கலெக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ டே பை டே. வி நவ் ஹோஸ்ட் மோர் தேன் 25,000 ஆடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ். இன் ஆர்டர் டு மேக் தீஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசோர்ஸஸ் மோர் ஆக்சசிபிள் அண்ட் பெனிஃபிஷியல் டு அவர் ரேடியோ லிசனர்ஸ், வி ஹாவ் ரீஆர்கனைஸ்ட் அவர் ப்ரோக்ராம் ஷெட்யூல். திருமுறை மியூசிக் அண்ட் திருமுறை டிஸ்கோசஸ் வில் பி ப்ராட்காஸ்ட் ஆன் திருநெறிய தமிழோசை. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shiva Tattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ஓம் நம சிவாய்.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த் கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ये सब कुर्सी में बैठे हुए वही दिवाली के खड़े हैं भाई, या स्टेज में बैठा हुआ भी वही घड़ा है. ये नहीं समझ लेना कि कुर्सी में बैठे हुए सब घड़े हैं, ये स्टेज में बैठा हुआ भी वही घड़ा ही है. ये घड़ा ही बक बक कर रहा है, बोल रहा है. घड़ा बोलता है वो. आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी दिग्विजय के लिए ये निकले थे और भ्रमण करने के क्रम में वह पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारा पृथ्वी माने भारत भूमि को वह पैदल यात्रा करते हुए अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार कर रहे थे. निकले और सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच गए. कश्मीर में सर्वज्ञ पीठ पर आसीन हो गए. सर्वज्ञ और जगतगुरु आचार्य के पद पर विभूषित हो गए. वहां से घूमते हुए बद्री केदार की यात्रा किया. बद्रीनाथ में पहुंचकर बद्रीनाथ मंदिर का उद्धार किया. ये अभी जो बद्रीनाथ मंदिर है वह शंकराचार्य जी का ही देन है. आज से 1250 वर्ष पहले नास्तिकों ने उस मंदिर को तोड़कर बद्री विशाल भगवान के मूर्ति को अलकनंदा में फेंक दिया था. वहां कोई मंदिर का नाम निशान ही नहीं था. भगवान शंकराचार्य जी को भगवान नारायण ने कहा कि मेरी अवस्था यह है, तुम वेद उद्धारक हो, तुम वेद उद्धारक हो, तो वेद सम्मत मेरा विग्रह यहां नदी में पड़ा हुआ है और मेरा भी उद्धार करो. भगवान बद्री विशाल नारायण ने शंकराचार्य जी को कहा और शंकराचार्य जी पहुंच गए ठेठ हिमालय और वहां जाकर खोजी किया, ध्यान लगाया तो अलकनंदा में भगवान नारायण की मूर्ति पड़ी हुई है. भगवान शंकराचार्य जी ने उस मूर्ति को निकाला, मूर्ति का उद्धार किया. नारायण का तो क्या उद्धार करना था, मूर्ति का ही उद्धार करना था और इसी के माध्यम से वैदिक धर्म का उद्धार करना है. और पुनः मंदिर बनाकर उन्होंने उनके प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उनके सारी पूजा आजा की व्यवस्था मिलाई. दक्षिण भारत से ही ब्राह्मण को बुलाया और उनकी पूजा का नियम बना दिया. बद्री विशाल आज भी वही परंपरा अनुसार दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ही महाबद्री विशाल के आजा मुख्य पूजा करते हैं, मुख्य भट्ट के रूप में पूजा करते हैं. वो परंपरा आज भी है. उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी बद्रीनाथ से केदारनाथ होते हुए आगे नेपाल पहुंच गए. नेपाल पूरे शाक्तों का और कापालिकों का देश था और शाक्त कापालिक इतने जबरदस्त होते थे कि तंत्र मंत्र पर ही विश्वास करते थे और बड़े जबरदस्त तांत्रिक थे और शाक्त विशेष करके तांत्रिक ही होते हैं. शाक्त में दो भेद हैं, एक वाम मार्ग और दूसरा समयाचार, वामाचार समयाचार दक्षिण मार्ग. और जो सात्विक हैं वो दक्षिण मार्ग समयाचार और जो वाम है वो तामसिक है। तो वह लोग अब तंत्र सिद्धि करने के लिए भैरव और काली चामुंडा इत्यादि की उपासना करते हैं, तामसिक उपासना करते हैं, पंचमकार का आश्रय लेते हैं और अपनी उपासना सिद्धि करने के लिए नरबलि का प्रयोग करते हैं, तामसिक हैं वो। तो ऐसे ही जब शंकराचार्य जी नेपाल पहुंचे तो वहां पर भी पशुपति भगवान का नास्तिकों ने मंदिर तोड़ दिया और मूर्ति को फेंक दिया सरोवर में। भगवान पशुपति ने कहा कि मेरी ये अवस्था है, तुम वेद उद्धारक हो तो मेरा भी उद्धार करो, क्योंकि वेद का तब उद्धार माना जाएगा तो वेद सम्मत मूर्ति यज्ञ यागादि की प्रतिष्ठा हो, मंदिर वैदिक प्रक्रिया है, मूर्ति पूजा ये सनातन धर्म वैदिक है, भगवत विग्रह की आराधना ये वैदिक है, वेद उद्धार का तो यही प्रयोजन है कि वेद सम्मत समस्त प्रतीक और क्रियाएं वैदिक सम्मत ही होवे, यही वेद उद्धार का प्रयोजन है। तुम वेद उद्धारक हो, वेद सिद्धांत का प्रचारक हो तो मेरी ये अवस्था है तो तुम मेरा भी उद्धार करो। तो भगवान शंकराचार्य जी ने पशुपति भगवान के विग्रह को भी खोजा और निकाला और वहां पुनः प्रतिष्ठा की। तो उस समय वहां के तांत्रिकों ने भगवान शंकराचार्य जी को चुनौती दिया शास्त्रार्थ करने के लिए, उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है शास्त्रार्थ किया जाए और जो हारेगा वह उसके सिद्धांत को स्वीकार करेगा, शास्त्रार्थ में तो यही है, जो हारेगा वह उसके सिद्धांत को स्वीकार करेगा। शंकराचार्य जी यदि हार जाएंगे तो कापालिक और तांत्रिकों का सिद्धांत स्वीकार करेंगे, कापालिक तांत्रिक यदि हारेंगे तो शंकराचार्य जी के सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए और उसने ये व्यवस्था मिलाई कि बीच में पर्दा रहेगा, हम दोनों के बीच में पर्दा रहेगा और पर्दे के एक तरफ तुम बैठना और पर्दे के दूसरी तरफ मैं बैठूंगा और जब हम प्रश्न करेंगे तो तुम उत्तर देना, तुम प्रश्न करोगे हम उत्तर देंगे, यही शास्त्रार्थ की प्रक्रिया है। जो उत्तर दे नहीं पाएगा यह माना जाएगा कि वह हार गया। शंकराचार्य जी स्वीकार कर गए, पर्दा लगाया गया, पर्दे के एक तरफ शंकराचार्य जी बैठे, पर्दे के दूसरे तरफ तांत्रिक बैठ गया। अब शास्त्रार्थ तो शुरू हो गया तो तांत्रिक ने क्या किया कि एक मिट्टी के घड़े को वहां रखा और अपने तंत्र शक्ति के द्वारा किसी प्रेतात्मा को उस घड़े के अंदर आवाहन करके रख दिया। घड़े के अंदर किसको? प्रेतात्मा, प्रेतात्मा को उस घड़े के अंदर आह्वान करके रख दी और तांत्रिक तो चला गया अपने मस्ती से, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है और शंकराचार्य जी के शास्त्रार्थ तो वही प्रेतात्मा कर रहा है। ले जी शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, वो उत्तर दे रहा है, वो प्रश्न करता है, शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, कई दिन तक चल रहा है। तो बड़ा आश्चर्य लगा शंकराचार्य जी को, ये क्या बात है, वो खाना खाने भी नहीं जाता है, नहाने धोने को भी नहीं जा रहा है, लघु शंका भी नहीं कर रहा है, क्या बात है ये। कुतूहलता शंकराचार्य जी के मन में हुई तो शंकराचार्य जी ने पर्दा उठाकर देखा तो वहां कोई तांत्रिक नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, एक मिट्टी का घड़ा रखा है और वो मिट्टी का घड़ा जवाब दिया जा रहा है, भाई उत्तर दिया जा रहा है। और क्योंकि जब पर्दा उठा के देखा तो वह घड़े से प्रेतात्मा भाग गया। देखो असली सन्यासी के सामने प्रेतात्मा उपस्थित नहीं हो सकता है, प्रेतात्मा का प्रभाव, भूतों का प्रभाव असली सन्यासी के सामने वो खड़े नहीं हो सकते, वो छाया, वो छाया वहां उपस्थित हो ही नहीं सकता है। तो शंकराचार्य जी ने जैसे देखा तो घड़े में से प्रेतात्मा भाग गया। तो शंकराचार्य जी फिर उस कापाली को खोजने लगे, कहां गया तू, तो फिर बाद में आया तो क्या हुआ, तो क्या चला गया, तो बोले मेरे जो तंत्र है तुम उसी के साथ परास्त हुए जा रहे हो। बोले नहीं, तुमने कपट किया, छल किया है, तुम सामने आमने सामने बात करो, पर्दा हटाकर शास्त्रार्थ करते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसने स्वीकार कर लिया हार, अपने हार को स्वीकार कर लिया। तो ये श्लोक से मुझे वो शंकराचार्य जी के वो दृष्टांत याद आ गया, घड़े के अंदर से प्रेतात्मा बोल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि कुर्सी में बैठे हुए सारे के सारे घड़े के अंदर प्रेतात्मा ही है, ये नहीं समझ लेना, मतलब ये भी कोई घड़े से कम नहीं है। नाना छिद्र घट, वो शंकराचार्य जी कह रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं, अनेक छिद्रों से युक्त हुआ हुआ घड़ा। एक घट शब्द का अर्थ क्या है पता है, घट इति घट, कोई इसको बना देवे तब ये बनता है, अपने आप नहीं बनता है। जैसे मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बनता है, कोई बनाने वाला हो वो बनावे, आकार और प्रकार देवे, तब वह घट बनता है। घटनात् घट, संगठन करके बनाया गया हुआ है, इसीलिए उसको घट कहते हैं। ये शरीर भी किसी के द्वारा बनाया गया है, इसमें जो मसाला प्रयोग किया गया है वह तो पंचमहाभूतों का है, पंचमहाभूतों का मसाला इसमें प्रयोग किया है। 50% मिट्टी का मसाला प्रयोग किया गया है, कितना प्रतिशत, 50%। ये मिस्त्री लोग बनाते हैं ना, घर बनाते हैं तो उसमें कई चीज प्रयोग करते हैं, रेत ढलान करनी हो, आरसीसी ढलान करनी हो तो उसमें कई चीज का प्रयोग होता है, रेत का प्रयोग होता है, कंक्रीट का, गिट्टी का प्रयोग होता है, और साथ में सीमेंट का प्रयोग होता है, फिर पानी का प्रयोग होता है। तो उसकी फॉर्मूला है, प्लास्टर करने का जो मसाला है वह सीमेंट कितना और उस अनुपात में रेत कितना, और ढलान करनी हो तो सीमेंट कितना, रेत कितना और कंक्रीट कितना, इसका एक अनुपात हुआ हुआ है। कहते हैं हम लोग आश्रम में कहीं बनाते हैं तो ठेकेदार और मिस्त्री कहता है, महाराज प्लास्टर करने के लिए तो 1-4 का मसाला बनाना पड़ता है। तो हम नहीं समझे कि 1-4 क्या होता है, तो उसने बताया 1 बोरा सीमेंट होगा तो 4 बोरा रेत डालना पड़ेगा, 4 बोरा रेत और 1 बोरा सीमेंट का जो मसाला बनेगा उसको, उसकी फॉर्मूला है उन लोगों की, 1-4 का मसाला है। और कहीं कहीं कहते हैं कुछ ठेकेदार 1-4 के मसाले की जगह 1-6 मसाला कर देते हैं, वो मसाला बचाने के लिए ठेकेदार, ये क्या करते हैं तो सीमेंट बचाते हैं ठेकेदार, ठेकेदार बदमाशी करते हैं। तो देखना महाराज 1-4 का मसाला बनाओगे तब आश्रम बढ़िया बनेगा। तो हम कहते हैं 1-4 का मसाला बनाना ठेकेदार, हां हां महाराज 1-4 का बनाते हैं, और हम इधर उधर हो जाते हैं, आश्रम का कर्मचारी इधर उधर हो जाता है, फिर ठेकेदार जाकर लेबर को कहता है 1-6 डालना हो, 1 बोरा सीमेंट डालना और 6 बोरा रेत डालना, बोल देता है बदमाश है। ढलान के लिए भी नियम है उसके तो ये जो बनाया गया है आपका शरीर का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर के मसाला तो 1-4 का फॉर्मूले से बना है, तो आपका ये घर ये घड़ा कौन से फॉर्मूले से बना है, इसमें 50% तो मिट्टी है, कितना प्रतिशत, ये घड़े में कितनी प्रतिशत मिट्टी है, कौन से घड़े में, कुर्सी में बैठे हुए घड़े में, एक कमीज और कुर्ता लगाकर बैठे हुए घड़े, एक घड़े को कमीज कुर्ता लगा दिया और कुछ भी नहीं है, है? और ये दिवाली के लिए बनाया गया घड़ा था नाना छिद्र, क्योंकि पानी भर के, पानी के प्रयोजन से तो बनाया नहीं है ये घड़ा है, इसीलिए तो प्रयोग गलत हो रहा है ना। क्या गलत हो रहा है? दिवाली के दिया बत्ती जलाने के लिए बनाया गया यह घड़ा अनेक छिद्रों से युक्त किया गया था, और जो दिवाली के दीपक जलाने के लिए बनाया हुआ घड़ा है, उस घड़े में कोई पानी भरकर लाना चाहे तो संभव होगा? हाँ, तो आप कर क्या रहे हो? यही कर रहे हो, दिवाली के लिए बनाया गया घड़े में अमृत भरना चाहते हो, ज्ञान अमृत, वो तो चू रहा है, छिद्र ही छिद्र। हम लोग क्या कर रहे हैं? दिया जलाने के लिए बनाया हुआ घड़े में अमृत भरना चाह रहे हैं, इसलिए तो अमृत टिकता नहीं है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान एक्षदा अमृत चक्षुम अमृतत्वमिच्छन् परांजिखानि व्यत्रिणत स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा। स्वयंभो परमात्मा ने इंद्रियों का स्वभाव ऐसा बनाया, इंद्रियों को बनाकर ऐसा हिंसित कर दिया कि यह स्वाभाविक रूप में बाहर जाना ही इनका स्वभाव बन गया है। परांजिखानि व्यत्रिणत तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मा पश्यति, तब ये इंद्रियां खाली बाहर तो आराम से दौड़ सकती है, बाहर के पदार्थों को तो आसान से जान सकती है। आज तक हम वही तो कर रहे हैं, बाहर के सारे पदार्थों को जान रहे हैं, दुनियादारी का इंफॉर्मेशन हम पूरे प्राप्त कर रहे हैं, न अंतरात्मा, परंतु अंदर रहने वाला जो दीपक है उसको हम नहीं जान रहे हैं। दीपक की रोशनी से जो बाहर की प्रकाश वस्तुएं हैं उनको तो हम जान रहे हैं, लेकिन वो बाहर की पदार्थ जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं वो खुद मूल प्रकाश से हम इतने अनभिज्ञ हैं कि करें क्या। तो ये दृष्टांत यहां दे रहे हैं, नाना छिद्र घटो दर स्थित मां, ये घड़ा किसी गड़वैया ने गड़ा है, ये है गुजराती में भजन सुना था गड़वैया, किसी गड़वैया ने गड़ा हुआ होने के कारण, घड़ा बनाया हुआ होने के कारण इसका नाम घड़ा। नाना छिद्र, आपको पता है इस घड़े में कितने छिद्र हैं? है 9। टोटल कितने थे? 11 थे। इस घड़े में टोटल 11 छिद्र थे, 2 छिद्र तो बाद में बंद हो गए, 1 छिद्र तो धाई ने बंद कर दिया, आपने बंद नहीं किया था, है ना? 1 छिद्र तो धाई ने बंद कर दिया, नर्स ने बंद कर दिया, और दूसरा छिद्र वो अपने आप ही बंद हो गया, लेकिन बाकी बचे 9 छिद्र। पूरम एकादश द्वारम अजस्त्रम पत्र चेतसा, कठोपनिषद में 12 छिद्र वाला घड़ा बताया गया है, और गीता में इसको नवद्वारवती पूरे देही, नवद्वार पूरे देही, 9 छिद्र वाला है। 9 छिद्र ये ओपन है, खुले हैं, बंद नहीं है, और उन्हीं छिद्र 9 छिद्र जब खुले हुए हैं, बंद नहीं है, उसी में ज्ञानामृत भर रहे हैं, कहां से चूता जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कौन कौन से छिद्र से अमृत भरते हैं, प्रेमपुरी में भर के बाहर निकलते हैं, सब चू जाता है, चू जाता है, पता नहीं कहां चू जाता है, सबसे पहले तो चप्पल में चूता है, जूता चप्पल के स्टैंड में पहुंचते ही वहां चू जाता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लिफ्ट में चू जाता है कि तू पहले कि मैं पहले, है वहीं चू जाता है, और थोड़ा बचा है फिर वहां चप्पल में, फिर घर में जाओ तो फिर ऑफिस में जाओ, फिर दुकान में जाओ, पता नहीं कहां शाम तक खाली, फिर जब सुबह उठते हैं तो खाली होता है, चलो प्रेमपुरी में भरने जाओ, फिर वही घड़ा लेके आते हैं, छिद्र बंद करके आते हैं तो भर जाता है, आज तक इतना देर नहीं लगता, इतना देर ना लगता। प्रश्न करते महाराज इतने वर्षों हो गया क्यों नहीं समझ में आ रहा है, चूहे जा रहा है, क्या करोगे? नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रवाह भास्वरम। एक घड़ा ऐसा है, यही शरीर, इसमें 50% मिट्टी का प्रयोग हुआ है और बाकी 50% जल, तेज, वायु और आकाश का प्रयोग हुआ है, और पूरा का पूरा 50% मिट्टी का प्रयोग है। इसीलिए दीपक बुझ जाने के बाद, दीपक जलता रहता है तब कुछ भी कहो, इसको देवदत्त कहो, यज्ञदत्त कहो, ब्राह्मण कहो, क्षत्रिय कहो, वैश्य कहो, स्त्री कहो, पुरुष कहो, गुरु कहो, चेला कहो, कुछ भी कह दो, जब तक दिया जल रहा है। और जब दिया बुझ जाता है तो तुरंत इसका नाम पड़ जाता है पार्थिव। इसका नाम क्या पड़ता है? पार्थिव। ये कोई पार्थिव ये बाद में नाम रख दिया है ऐसा नहीं है। पार्थिव शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी भव पार्थिव। जैसे घड़े को भी अभी आप पूछोगे ये क्या है तो बोले पार्थिव है, किसका है तो बोले मिट्टी का है। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना, मिट्टी का खिलौना है, फना होने से डरता है। ये खिलौना खुद मिट्टी का है, नियति यह है कि वह खुद मिट्टी का है, और इसकी समस्या यह है कि टूटने से यह हमेशा डरता है। अरे भाई, मिट्टी का खिलौना और टूटने से डरकर कब तक डरता रहेगा, कब तक बचता रहेगा? कभी न कभी तो मिट्टी का खिलौना टूटे ही जाएगा। खिलौना ही मिट्टी का है, वह फना होने से डर के करेगा क्या? फना तो होना ही है, उसको नियति है उसकी। इसीलिए किसी ने कहा है ना, मिट्टी का खिलौना फना होने से डरता है, बड़ा होना चाहता है, बड़ों की बात सुनकर बड़ा होने से डरता है। किसी ने कहा है, बड़ों की बात सुनता है बड़े प्रेम से, बड़ा होना चाहता है लेकिन बड़े होने से डरता है। कहीं बड़ा होने चला गया तो कहीं चौपट न हो जाए, इधर न छूट जाए। ज्ञानी होना चाहता है, ज्ञानी की बात सुनता है तो ज्ञानी होना चाहता है लेकिन डरता यह है कि कहीं ज्ञानी हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया सुखदेव की तरह, और साड़ी और पैंट सब उतर गए तो क्या होगा मेरा? सुखदेव के तो पॉइंट शॉट थे नहीं भाई, दिगंबर थे। फिर बड़ों की बात सुनकर बड़ा होने से डरता है। जड़ भरत हो गया तो बोले अरे मैं जड़ हो गया तो फिर बचाता है अपने अध्यास को और रक्षा करने लग जाता है अध्यास की। यही चाहता है कि जगत की प्रतीति होते हुए, सारे व्यवहार होते हुए मैं जीवन मुक्त हो जाऊं। अरे बाबा, पहले हिम्मत करो, मारो लात, तोड़ो अध्यास, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बोध होने के बाद फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोध होने से पहले हिम्मत करना पड़ेगा। सभी ने हिम्मत किया है, सभी ने हिम्मत किया है। जिनको भी बोध हुआ, महापुरुषों को, उन्होंने हिम्मत किया है। इस अध्यास को पहले लात मारा है तभी जाकर वह वो उनको बोध की प्राप्ति हुई है, और उसके बाद फिर तो सहज हो जाता है। तो ये मिट्टी का खिलौना है। नाना छिद्र घटो दर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम। परमात्मा ने ये घड़े को, पंचभूतात्मक घड़े को, 9 छिद्र 12-11 छिद्र वाले इस घड़े को बनाकर और इसके अंदर वह स्वयं दीपक के रूप में, जलता हुआ दीपक के रूप में स्वयं बैठ गया, यानी जल रहा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ज्योति जैसा है, बत्ती की तरह है, घी के ज्योति जैसा, उसका ध्यान करो। अरे आत्मा कैसा है? ये तो अलग अलग है। ज्योति जैसा है, आत्मा ज्ञान जैसा है, आत्मा चैतन्य है। जिस किसी का भी ध्यान कर लो, कहां करोगे? नाना छिद्र घट उदर स्थित, या उदर उपलक्षण है, घड़े के अंदर यानी घटाकाश में, अंदर घड़े के अंदर, जैसे हम लोग एक दिया जलाते हैं वो दिया जलता रहता है, दिया दिखता नहीं, दिए की रोशनी उस छिद्र से बाहर आती है, दिया नहीं दिखता है। यदि घड़े के अंदर न रखो तो दिया स्पष्ट दिखेगा, घड़े के अंदर रखते हैं तो दिया दिखता नहीं लेकिन रोशनी बाहर आता है। अभी भी यही हो रहा है, इस घड़े के अंदर वह आत्म ज्योति जल रही है लेकिन वो दिया खुद नहीं दिख रहा है, आत्म ज्योति नहीं दिख रही है, उसकी रोशनी इन इंद्रिय रूपी छिद्रों से बाहर निकली जा रही है और वो प्रकाश रोशनी पदार्थों को प्रकाशित कर रही है। इस श्लोक को और पूरा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Sirappuli Nayanar Puranam, presented by Sri Singapur Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Nayanmar ki kahani jinka naam Sirappuliyar hai. Mahan Bhakt Trigyan Sambandhar ne apni ek kavita mein Kaveri ke tat par sthit Akur namak sthan ka varnan करते हुए कहा है, यह नगर मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ऐसी महिमा वाले नगर में एक ब्राह्मण कुल में चिरपुलियार का जन्म हुआ। उनके जीवन का ध्येय था नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, यज्ञ की अग्नि में पुण्यकारी यज्ञों का अनुष्ठान करना, शिव भक्तों को भोजन कराना और उनका आदर सत्कार करना। चिक्किलर ने चिरपुलियार को के निर्दोष त्यागपूर्ण जीवन का उल्लेख हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए किया है। पेरियपुराणम में असाधारण करिश्मे और चमत्कार करने वाले भक्तों की संख्या अत्यल्प है। चिरपुलियार जैसे संत सामान्य जन जैसे ही दिखते हैं। वे दूसरों को भोजन कराने को अपने जीवन का परम कर्तव्य मानते हैं, तब उनमें और हम में क्या अंतर हो सकता है? दूसरों को अन्न प्रदान करना, भोजन खिलाना एक साधारण सामाजिक कार्य है, पर इसी को परम धर्म और जीवन का लक्ष्य बनाने वाले किसी विघ्न के कारण सेवा से मुंह नहीं मोड़ते। वे यह मानकर संतोष नहीं कर लेते कि जब तक हाथ में था सेवा की, अब संभव नहीं हो पा रहा तो क्या करें। इलयानकुड़ी मारर तथा चिरुपुलियार जैसे संत इसके अपवाद हैं। सेवा में आई बाधा को दूर करने का वे पूर्ण शक्ति से प्रयास करते हैं। यदि यह बाधा उनकी शक्ति की सीमा से परे है तो फिर भगवान द्वारा उत्पन्न की गई हो तो वे भी कर्तव्य निर्वाह करते हैं, अन्यथा अपने प्राणों का उत्सर्ग करने से हिचकिचाते भी नहीं। यह अंतर इन भक्तों को सामान्य जन से अलग करता है। इनकी जीवन शैली हम सबके लिए महान है, इनकी कोई अलग पहचान भी नहीं है। चिक्किलर जैसे सुधीजन भी ने पहचान कर उन्हें आदर्श मानते हैं, इसलिए इन्हें प्रिय पुराण में स्थान मिला। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम shaivam.org। ओम नमः शिवाय।
5: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: கோமல கந்தர கனகந்தரி பிஸ் விஷய பிஸ் விஷய கா பிரதீக ஹை. பிஸ் கே ஹை? விஷய கா பிரதீக ஹை விஷய. அச்சா சந்திரமா கே ஹை? புத்தி கா பிரதீக ஹை. விஷய புத்தி பூர்வக ஹோஷியாரி பூர்வக சேவன் கரோ தோ विषय तुम्हारे लिए नुकसान नहीं कर सकता। जैसे विषपान करने पर भी मस्तक में सो

शीश। मैना ने मैना कहा मोल भय दस बीस। मैना का तो मूल्य हो रहा है, सब आदर कर रहे, बड़ा प्रेम कर रहे, और बकरा बिना मतलब का म्यां-म्यां करता रहा, कट गया से। मैना भी म्यां-म्यां करती तो कोई पूछता उसको? लेकिन मैना को कोई काट के खाता है? म्यां-म्यां करने वाले को जिंदा कोई नहीं छोड़ता है। बकरी ही दाने वाली है ना, म्यां-म्यां करता के लिए तो यही ठीक है। शंभु भय जगदीश। सोम कलादर मौलौ कोमल घन कंदरे महामहषि। तीसरा संबोधन है महामहषि। मह माने प्रकाश, महामहषि माने महान प्रकाश स्वरूप। ये महामहषि का अर्थ तब पुष्पदंताचार्य जी ने तवैश्वर्य यत्नादि यदुपरि विरिंची हरिरथ परिच्छेत्तुम याता। ज्योतिमय ज्योतिर्लिंग अग्निमय पुंज अग्निपुंज जो लिंग वहां प्रकट हुआ उसको पता लगाने के लिए ब्रह्मा ऊपर गए और विष्णु नीचे गए, पता लगा नहीं सके। उस अग्निमय लिंग का नाम महामहषि, महान प्रकाश स्वरूप, जाज्वल्यमान प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्लिंग। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयति अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। महामहषि ये अर्जुन, अग्नि में जो तेज है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, सूर्य में जो प्रकाश है, वो प्रकाश छोटा है और उसमें जो प्रकाश पहुंचा है वो मेरे से पहुंचा होने के कारण मैं महामहषि। तो शंकराचार्य कहते हैं कि हे शिवा आप महामह है, महामह, मह माने प्रकाश। चौथा संबोधन है गिरिजानाथे। गिरिजा का पति स्वामी नाथ, हे गिरिजानाथ। हिमाल पार्वती के पिता पर्वतराज हिमाल है ना, और नारद जी के कहने के बाद हिमाल ने कहा कि पार्वती की विवाह शादी शिव से ही करना है, और हिमालय पर्वत शिवजी से अपनी कन्या से पाणि ग्रहण करने के लिए हजार अनुनय विनय करते रहे, शिवजी ने स्वीकार नहीं किया। अब शिव भगवान शिव पार्वती से शादी कर लेवे, इसके लिए कामदेव ने हजार कोशिश की, कामदेव भी सफल नहीं हुआ। लेकिन जब पार्वती ने विचार किया कि पिताजी के कहने से भी शिव राजी नहीं हुए, कामदेव के प्रयत्न से भी शिव राजी नहीं हुए, तब शिव को राजी तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तब पार्वती ने स्वयं तपस्या आरंभ की, और उस पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव ने खुद ही वरण किया। लेकिन शिव जी ने पार्वती को अपने आप ही वरण किया। इसलिए उमानाथ हो गए, गिरिजानाथ।

0: మామకహృదయం నిరంతరం రమతాం.
1: ఆప్ నిరంతర్ మేరే హృదయ మే హీ విచరణ కరే, మేరే హృదయ కు ఛోడ్కర్ ఇదర్ ఉదర్ నా భటకే.
0: మామక హృదయం నిరంతరం రమతాం.
1: आगे फिर शंकराचार्य जी कहते हैं, सारसना ते नयने तावेव करो सैव कृतकृत्य हो या ये यो यो भर्गम वदति इच्छते सदार्चतः स्मरति. సా రసన, ఇసలే తులసీదాస్ జీ నే భీ ఏక్ జగహ లిఖ్ దియా హై నా. భగవాన్ కా నామ స్మరణ న కర్నే వాలీ జో జిహ్వా హై వహ ధర్తీ కే బీల్ మే రహనే వాలే సర్ప కే తరహ హై. తులసీదాస్ జీ నే కహా जिह्वा दादुर केरी, वो जिह्वा को सर्प कहना चाहिए जिस जिह्वा से भगवान का स्मरण न हो. तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं वही जिह्वा असली जिह्वा है, सही रूप में जिह्वा है, जिस जिह्वा से भर्गम बदती सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा भर्ग उसके गुणानुवाद का गान करता हो. तो सा रसना नहीं, सा रसना या रसना सा भर्गम वदति, वही जिह्वा का सार्थक है होना जिस जिह्वा से परमात्मा के दिव्य गुणानुवाद का गान हो. मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तत्कथनम तत् प्रबोधनम अन्योन्य यत् प्रबोधनम. जिह्वा की सार्थकता मेथी के गोटे खाने के लिए नहीं है. मेथी का गोटा समझ गए ना, गुजराती लोग समझ गए, तुम लोग नहीं समझे. मेथी का पकौड़ा है, गोटा माने पकौड़ा है. जिह्वा की सार्थकता उसके लिए नहीं है. अपने रुचिपूर्वक विषय सेवन करना ही जिह्वा की सार्थकता नहीं है, ये तो सुखी चमड़ी और सुखा हड्डी मिल जाए तो कुत्ता भी समझेगा मैं कृतकृत्य हो गया. होगा कि नहीं बोलो. सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा मिल जाए तो कुत्ता भी कृतकृत्य मानेगा अपने को. तो फिर कुत्ते के जिह्वा में और तुम्हारे जिह्वा में अंतर क्या रहेगा. लेकिन कुत्ते का जिह्वा भर्गम न बदती, परमात्मा के दिव्य गुणानुवाद नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, इसलिए उसके जिह्वा सार्थक नहीं है, उदरार्थक है. उसके जिह्वा क्या है, सार्थक नहीं है, उदरार्थक है. और तुम्हारी जिह्वा भी उदरार्थक ही हो गई तो क्या अंतर रह गया. हमारी जिह्वा भर्गम बदती, तभी जिह्वा सार्थक है. सारसना या के साथ अन्वय कर लेने, या भर्गम वदति सारसना सार्थकम। ये नयने जो नयन भर्गम इच्छते, भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करता है, भगवान के दिव्य अनेक जो रूप है, अर्वाचीन रूप, उन अर्वाचीन रूपों का दर्शन करता है, तब उस नयनों का नेत्रों के सार्थकता है। भर्गम इच्छते, अन्वय करना। तावेव करहु, तुलसीदास जी ने भी कह दिया ना एक जगह, आंख से यदि परमात्मा के अर्वाचीन रूपों का दर्शन नहीं होता है तो वो आंख मयूर के पंख के समान है। तुलसीदास जी ने कह दिया सीधे, मयूर का पंख भी ऐसे देखो तो क्या आंख, बड़ी आंख जैसी है, लेकिन वो किसका रूप दर्शन कर सकता है? तीसरा बताया, तावे व करूं, वही हाथ सार्थक हैं जिन हाथों से भर्गम सदा अर्चतः, परमात्मा के अर्वाचीन रूपों का, विग्रहों का नित्य निरंतर सेवा करता हो, अर्चना करता हो, वही कर, वही हाथ की सार्थकता है। अन्यथा सैव कृतकृत्य, उसी का जीवन धन्य है। यो कृतकृत्य सैव, यो भर्गम सदा स्मरति सैव कृतकृत्यता, नित्य निरंतर जो भर्ग का अर्वाचीन रूप का स्मरण करता है चित्त से, वास्तव में उसी का जीवन सार्थक है। अन्यथा जीवन भी निरर्थक है, हाथ भी निरर्थक है, नेत्र भी निरर्थक है, और वाणी भी, रसना भी निरर्थक है, है ना? भर्गम वदति सारसना, वही रसना, सही रूप में रसना है, और नयन इच्छते, भर्गम इच्छते, वही सार्थक है। यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। यही तो भक्ति का भाव है, एक एक अंग से परमात्मा की अर्चना होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए, या इन्हीं इंद्रियों से जो कुछ भी हो, इन साधनों से, वो सब का प्रयोजन केवल भर्ग की प्रसन्नता होनी चाहिए, उसी के लिए हो। ऐसे सुभाषित श्लोक तो बहुत से हैं, शास्त्र में भरा पड़ा है। शंकराचार्य जी और आगे कहते हैं, अति मृदुलौ मम चरणौ अति कठिनं ते मनो भवानी स, इति विचिकित्सां संत्यज शिव कतमासित गिरौ तथा वेशः। तथा आवेशः, ठीक, वो संधि प्रवेश आवेश एक ही चीज है, पाठांतर है, अर्थ एक ही है, प्रवेश कहो या आवेश कहो, प्र उपसर्ग है, वेश प्रवेश, दो संबोधन हैं यहां। भवानी सह, भवानी के ईसा स्वामी, हे भवानी ईसा भवानी सह। दूसरा संबोधन है नीचे के लाइन में, शिवा कल्याण स्वरूप, हे भवानी सा हे शिवा। यदि विचिकित्साम आपके मन में, यदि शंकराचार्य जी कह रहे शिव जी के लिए, हे शिवा हे भवानी सा, यदि आपके मन में ये संशय शंका विचिकित्सा, शंका संशय विशेष चिकित्सा विशेष संशय हो, क्या कैसी शंका कैसी संशय, अति मृदुलौ मम चरणौ, मेरा चरण बहुत कोमल है नरम है, अब ये दुष्ट बार बार मुझे अपने हृदय में बुला रहा है और इसका हृदय पत्थर से भी बड़ा कठिन है, मेरा चरण अति नरम है कोमल है और जो मुझे बुला रहा है कि मेरे हृदय में आओ मेरे हृदय में आओ, और उसका हृदय बहुत कठोर है कठिन है, अब ऐसे कोमल चरण को लेकर उसके हृदय में मैं कैसे चल सकता हूं कैसे जाऊं और बुलाया जा रहा है, हैं? इस आशंका से आप मेरे हृदय में न आ रहे हो, हैं? तो ये शंका छोड़ दो हटा दो, यही कारण है मेरे हृदय में न आने का। कौन बोल रहे, मेरे हृदय में रमण करने विचरण करने न आने का यही कारण है। कौन सा कारण, आप ये समझते होंगे कि मेरा चरण बहुत कोमल है इस दुष्ट का हृदय बहुत कठोर है, अब मैं कैसे उसके हृदय में जाऊं, ये समझकर आप मेरे हृदय में नहीं आ रहे होंगे, यही बात है कि नहीं। बोले तुमने ठीक कहा, बात तो यही है। तो फिर मैं शिवा हे शिवा हे भवानी सा, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, कथम आसीत गिरौ वेशः, तब मैं तुमसे ये पूछूंगा कि नंगे पांव उन हिमालयों की चोटी में तुम भटके कैसे, बोलो नंगे पांव से हिमालय के उन कठोर पत्थरों में जब आप विचरण कर सकते हो, तो मेरा हृदय उस कठोर पत्थर जैसा तो नहीं है, ये बात सही है कि मेरा हृदय थोड़ा कठोर होगा, कठोर हुआ है क्योंकि मेरी मां जब मरी तो मैं मां के साथ मर नहीं सका, वियोग सहन करके बैठ गया, तो हृदय तो तब कठोर हुआ है ना, कठोर नहीं होता तो मैं मां के साथ ही मर जाता। बोलो आपका हृदय कठोर है कि नहीं, बोलो नहीं तो मां मरी तो मां के साथ ही मर जाते, आपका हृदय कठोर है कि नहीं, पिताजी मरे तो क्या मरे तुम, बाप मरा उन्हीं के साथ मर जाते ना, नरम होता तो पितृवियोग सहन कर पाते, कठोर था तभी पितृवियोग सहन करके बैठे हो। और आगे बढ़ो, तुम्हारा हृदय कठोर न होता पति मर के चला गया हम जिंदे रह पाते, उसी कठोरता के चलते ही तो पति मर गया, फिर भी हम जिंदे हैं। हमारा हृदय नरम है, कोमल है, भावुक है, आज के न्यूज में एक पेपर में एक न्यूज आया, मैं पेपर पढ़ता हूं, नहीं पढ़ता हूं ये बात नहीं है, पढ़ता हूं पेपर, न्यूज क्या आया, एक घर में देवरानी और जेठानी थे, हाँ, देवरानी जेठानी, हाँ, जेठानी 80 वर्ष की ढोकरी, देवरानी 70 वर्ष की, तो 10 वर्ष का फर्क। अचानक देवरानी मर गई, पेपर का न्यूज है आज, अचानक देवरानी मर गई, वही देवरानी उसकी सेवा कर रही थी बेचारी, वो मर गई। तो गांव वाले इष्ट मित्र सगे संबंधी आए तो औपचारिकता रोने लग जाते हैं ना, रोने लगे तो वो जेठानी 80 वर्ष की बूढ़ी भी रोने लगी, रोते रोते मर गई हुई ऑन द स्पॉट। उसी समय जब देवरानी मरी, इस बात को उसने सुना और सब आकर रोने लगे, वो भी रोने लगी तो रोते रोते मरी गई। तब तब दोनों का लाश एक ही साथ मरघट ले गए। ये राजस्थान की घटना, कितना भावुक होगी बेचारी, उसका वियोग सहन नहीं कर सकी। हृदय अली कठोर होता, हमारा होता था, हम क्या मरते उससे, कितना भावुक हुई होगी। सोची होगी मुझे मेरी सेवा तो वही करती थी, वही चली गई, अब हाय मेरा ख्याल कौन रखेगा, शायद ये भावना उसके दिमाग में आई होगी। जो हो वो संवेदना सहन नहीं कर सकी। शंकराचार्य जी कहते हैं, हे शिवा, आप ये समझकर मेरे हृदय में आने में संकोच कर रहे हो, यानी डर रहे हो, किस बात को लेकर, मेरा चरण कोमल नरम है, इसका हृदय कठोर है, तो इसके हृदय में मैं कैसे विचरण करूं, कैसे जाऊं। यदि ये सोचकर नहीं आए हो तो हम आपसे पूछते हैं कि पहाड़ों के उन कंदराओं में, उन पत्थरों में आप चले कैसे, और यदि आप वहां चल सकते हो तो ये निश्चित है कि वो पत्थर जैसा तो मेरा हृदय नहीं है, तो आपको तो आना ही चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। यह अनुनय विनय है भगवान शिव के साथ शंकराचार्य जी का। आगे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, धैर्यांकुशेन निवृतम रवसादा कृष्य भक्ति श्रृंखलया पुरहर चरणालाने हृदयम हृदयम मदेभम बधान चिन यंत्री। यहां संबोधन है पुरहर, पुरम त्रिपुरम हरति इति पुरहर, पुरहर माने त्रिपुरासुर को जिन्होंने मारा, नष्ट किया, तो पुरहर, हे त्रिपुरहर, मैंने एक हाथी पाल रखा था, मेरे पास एक हाथी है, लेकिन वो हाथी अब, पहले तो बच्चा था, सीधा साधा था, बच्चा था। मैंने उसका नियंत्रण में रखा था। अब तो दिन प्रतिदिन वह बढ़ता गया बढ़ता गया, भरी जवानी में पहुंच गया। शरीर भी उसका बड़ा हो गया, ताकत भी और बढ़ गया, और शरीर और ताकत के बढ़ते उसके मस्तिष्क में मद भी बढ़ गया। तब ये उन्मद हो गया, उन्मद, मद अधिक हो गया ना, उन्मद हो, उन्मद हो गया, मदेवम, मद से उन्मत्त तो हो गया याद। अब इसको नियंत्रण करने की कोशिश करता हूं, नियंत्रण नहीं आ रहा है, पकड़ में नहीं आता है। कोशिश करता हूं पकड़ू बांधू, पकड़ में नहीं आता है। आपसे अनुरोध है महाराज, धैर्यांकुशेन निवृतम रभसा कृष्य भक्ति श्रृंखलया, भक्ति रूपी जंजीर से उसको रभसा जबरदस्ती तुरंत ही, तुरंत, विलंब नहीं करना, नहीं तो बहुत नुकसान कर जाएगा ये, बहुत नुकसान करेगा। रभसा शीघ्रम भक्ति श्रृंखलया, भक्ति रूपी जंजीर से, पहले तो उसके सिर में जाकर बैठकर धैर्य अंकुशी न, लोहे का एक अंकुश होता है, मावत उसके सिर में बैठता है और मारता है, उसे चुभोता है, वो उन्मत्त हुए हुए हाथी को वो उसके चमड़ी में घुसा देता है, लोहे का इतना बड़ा, उसको अंकुश बोलते हैं, नहीं तो नियंत्रण नहीं होगा जब तक उसके खोपड़ी में नहीं चुभोएंगे। तो शंकराचार्य जी कहते हैं महाराज ये उन्मत्त हो गया है, धैर्य रूपी अंकुश से पहले तो उस पर नियंत्रण में लो और भक्ति श्रृंखलया रभसा आकृष्य तुरंत भक्ति रूपी जंजीर से उसको बांध डालो। कहां ले जाकर बांधे? आपके चरण रूपी खूंटे के साथ बांधो, मेरा मन रूपी हाथी को धैर्य रूपी अंकुश का प्रयोग करके भक्ति रूपी जंजीर से उसको अपने चरण रूपी खूंटे के साथ बांध डालो, और इतनी से काम नहीं चलेगा महाराज। कभी कभी तो ये भक्ति जंजीर तोड़ भी सकता है, और कदाचित भक्ति जंजीर ये तोड़ने लग जाए फिर ये उन्मत्त तो होगा, तब क्या करो? चिन्ह यंत्र ही ऐसा बाढ़ एक बनाओ, ऐसा कटघरा एक बनाओ, चिन्ह यंत्र कि चैतन्य रूपी कटघड़े के अंदर उसको घेरो, भक्ति रूपी रस्सी टूट भी जाए तो भाग न भागे, बस तब ये न तुम्हारा नुकसान करेगा, न मेरा नुकसान करेगा, न किसी का नुकसान करेगा। अन्यथा ये मन रूपी हाथी, चित्त रूपी हाथी, मन रूपी हाथी समद मत से भर चुका है, ये कहीं धन मत से भरा हुआ है, कहीं पद मत से भरा हुआ है, कहीं गुण मत से भरा हुआ है, हैं? बोलो, यही तो मत है, उन्मत्त होने के यही तो माध्यम है। मेरे पास इतनी गाड़ी, मेरे पास इतने घर, मेरे पास इतने पैसे, मेरे पास इतनी फैक्ट्रियां, मेरे पास इतने नौकर चाकर, ये सब मन रूपी हाथी उन्मत्त होने के लक्षण हैं। मैं इतना विद्वान, मैं गुणवान, मैं रूपवान, ये जो उन्मत्तता है मन रूपी हाथी की, ये उन्मत्तता है, ये खुद का भी नुकसान करेगा और यही उन्माद अन्य का भी नुकसान कर सकता है। तो आपसे विनम्र अनुरोध है महाराज, इस हाथी को पहले नियंत्रण में करो, भक्ति रूपी जंजीर से, धैर्य रूपी अंकुश से तुरंत इसको बांधकर आकृष्य खींच कर लाकर चरणालाने आपके चरण रूपी खूंटे के साथ बांध डालो। किसको? हृदय मधेभम वदान चिन्ह यंत्र, और इसको चिन्ह यंत्र चैतन्य रूपी यंत्र के अंदर बंद कर दो। और क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई, सिर्फ कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Shiva Mahima Stotra in Hindi, presented by Swami Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Baudh ke char bhaag hain. वैभाषिक सोत्रांतिक योगाचार माध्यमिक, तो बौद्ध दर्शन के चार को मिलाकर छह दर्शन इसलिए नास्तिक कोटि में आते हैं क्योंकि इन्होंने वेद के प्रामाण्य को स्वीकारा नहीं है। इतना ही है, जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करके चलते हैं, अपनी बुद्धि अपनी अनुभूति अपनी युक्ति बाद में लगाते हुए तो आस्तिक कहलाते, पर जो पहले अपनी बुद्धि दिमाग चलाते हैं और बाद में वेद का समर्थन लेते हैं उनको नास्तिक सबसे कहा है। तो छह नास्तिक कोटि में है और छह आस्तिक। आस्तिक कोटि में सर्वप्रथम न्याय वैशेषिक दर्शन है, सांख्य योग है और उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, ये बारह दर्शन कहलाते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी तो समझने की बात है। दर्शन शब्द का बहुत ही परिभाषा है, दो चार परिभाषा पर विचार करते हैं। दर्शन पर ही बोले तो दो चार घंटे हो जाए, एक ही व्युत्पत्ति लेते हैं। दृश्यते ज्ञायते अनेन दर्शनम, दृश्यते ज्ञायते अनेन इति दर्शन, जिसके द्वारा तत्व का जानकारी हो उसको दर्शन कहते हैं। इस व्युत्पत्ति से इंद्रियादि सिद्ध हुए। अब आप कहेंगे इंद्रियादि को कैसे हम जो है दर्शन कहें, भाई चक्षुरादि से सब दिखाई पड़ता, आंख से रूप देखते, कान से शब्दों को, और व्याप्ति ज्ञान सम्मान का बोध होता है सादृश्य ज्ञान से उपमा का। तो ऐसी व्युत्पत्ति करने से दर्शन शब्द का अर्थ हुआ इंद्रियादि। वेदांत दर्शन में सबका अधिष्ठान ब्रह्मी है, इंद्रियादि भी ब्रह्म से अभिन्न है, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त चैतन्यातिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं। इलाधिष्ठान तेन इंद्रियों का ब्रह्म होने से कोई आपत्ति नहीं, और यह किसी के गले न उतरता हो तो दूसरा व्युत्पत्ति किया है। दृश्यते ज्ञायते यद तद दर्शनम, जो देखा जाए जाना जाए जो अनुभव किया जाए वह दर्शन, इसको बोलते भावा व्युत्पत्ति। ये कहीं शब्द है व्युत्पत्ति वैचित्र्यात् अर्थ वैचित्र्यम, एक ही शब्द की हम जैसी व्युत्पत्ति करते हैं वैसा विलक्षण अर्थ निकल जाया करता है। सत्संग यही आपको लाभ होता है कि आप हर स्थिति को परिस्थिति को आप अच्छे ढंग से व्युत्पत्ति करके ग्रहण करते हैं, हर घटना को अच्छे ढंग से। यही व्युत्पत्ति समझने के लिए एक दृष्टांत में दिया करता हूं कि ऐसे ही सत्संग हो रहा था। सत्संग के बीच में एक बुढ़िया माता आई डंडे टेकती हुई। मां ने कहा पापी जी महाराज ओम नमो नारायणाय, बस सभा बिल्कुल सन्न हो गई। सबने कहा कुछ न कुछ दाल में काला होगा, क्योंकि जैसी जिसकी दृष्टि वैसा ही वह समझता है। प्रवचन भी शुरू हुआ, महात्मा जी ने कहा धन्यवादार कुतरिया, बैठ गए नीचे बूढ़ी मां। सत्संग समापन के बाद साहस करके उसमें एक बड़ी बुजुर्ग प्रबुद्ध जाने माने अधिकारा संपन्न, क्योंकि सब साहस नहीं कर सकते पूछने का, ऐसे अपने आए गिरीश भाई है और जो सीनियर लोग आए, बोले मां जी एक प्रश्न पूछूं। मां ने कहा पूछो बेटा क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे जिज्ञासा है, आपने भरी सभा में महात्मा जी को पापी जी महाराज ओम नमो नारायणाय क्यों की? ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं। उस बूढ़ी मां ने इस बात को सुनने के बाद कहा कि अच्छी बात, तू ये बता कुछ व्याकरण न्याय पढ़ा है कि नहीं? बोला थोड़ा थोड़ा तो सत्संग सुनता हूं, थोड़ा संस्कार है। उस बूढ़ी मां ने कहा देखो ये पा धातु है रक्षार्थ में, पा रक्षणे और पा पाने, पा रक्षणे से पाती शब्द बनता है और पा जो पाने है उससे पिबती बनता है, दुग्धम पिबती घृतम पिबती। इस महापुरुष ने शास्त्र के ज्ञान को अमृत को पी करके पा दी, संसार सागर सपना रक्षा कर लिया, इसलिए हमने कहा पापी। पापी शब्द बन जाता है दो धातुओं से, धातु द्वय से। वो व्यक्ति बड़ा चमत्कृत हुआ, बड़ा सुंदर मां ने अर्थ किया। अब वह आदमी गया महात्मा जी के पास, महाराज आपने भरी सभा में इस बूढ़ी मां को कुतरिया क्यों कहा, वो आपको पापी कहा? महात्मा ने कहा देखो भाई, कुतरिया में इतने शब्द उनको तोड़ो, कु मतलब कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती जटेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्त चेतः। कुश का एकाक्षर व्याकरण कोश के अनुसार अर्थ हुआ कुलम, और कुल शब्द का भी किनारा भी होता है, नदी के किनारे कुलम बोलते हैं, कुलम पिपीति सती, किनारा गिरना चाहता है। जब गंगा जी में बहुत बाढ़ आती है तो बाढ़ से बोलते कुलम पिपीति सती, भाई अब अपनी बचाव कर लो कुटिया का, ये कुल किनारा गिरने वाला है। तो कुल शब्द का अर्थ कुल खानदान वंश भी होता है, कुल का अर्थ किनारा भी होता है। त्रिधातु संप्रवन तारणयु अर्थ में तो संधि कर दो तो कु दरिया बन गया। इस बूढ़ी मां ने अपने कुल को तार दिया, अपने पुत्र पौत्र सबको इसने इतना सुंदर वेदांत का उपदेश दिया कि सभी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। अब आपके मन में शंका होगी, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो ये बिजनेस व्यापार मुंबई में रहना कैसे होगा? मन में होता होगा ना, ऐसा नहीं समझना। आत्मज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है, आत्मज्ञान संसार से आपको विमुख नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मज्ञानियों में से जनक महाराज का नाम लिया, केवल जनकादय, वो भी सदगृहस्थ थे, सम्राट थे, और राजा को दुष्टों को दंडित भी करना पड़ता है, अच्छे को इनाम भी देना पड़ता है। तो आत्मज्ञान से जीवन जीने की कला उपलब्ध होती है, न कि ये जो भगोड़ापन आता है। अर्जुन को भी जब भगवान ने आत्मज्ञान दिया तो अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मया च्युत हितोष्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव। पहले तो अर्जुन धनुष बाण को छोड़ करके भाग रहा था, पलायनवाद स्वीकार कर रहा था, पलायनवाद कि ये जो है बड़ी भारी हिंसा है, लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, ये अच्छी बात नहीं है, ये मरने के बाद लोगों के पाप लगेगा, लोक में अपयश होगा, और सब हमारे ही जो है गुरु है दादा है मामा था वो सब चचेरे ममेरे लोग हैं, ये तो संग्राम ठीक नहीं। इतना ही धर्म शास्त्र का दुहाई भी दिया कि आगे बड़ शंकर प्रजा हो जाएगी, संस्कार शून्य हो जाएंगे, बहुत सारे परिणामों को दिखाया। युद्ध के जो जो परिणाम हो सकते थे और होते हैं उन सारे परिणामों को श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान को बता दिया। परंतु भगवान ने जैसे ही उसको उपदेश दिया, गीता का प्रथम उपदेश सूत्र है अशोच्यानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को जुलाब दिया। जुलाब जानते हैं ना, पुराने जमाने में शरीर की शुद्धि के लिए ज्वरादि कोई रोग हो जाए तो जुलाब जमाल घोटा देते थे, उससे केवल रेचन क्रिया होती है, शरीर अंदर से साफ हो जाता। इसके बाद औषधि देते थे, तुरंत असर करता था और जैसे बीमारी दूर होती है। अब आजकल तो सीधा दवाई खाए जाओ, दूसरा दिन सारी बीमारी शुरू हो जाता है, ये परंपरा पर्याय थी। तो भगवान ने अर्जुन को वही जमाल घोटा पिलाया, क्या कि प्रज्ञावादाश्च भाषसे, बात तो पंडितों की तरह करता है और इस शरीर को लेके शोक करता है। शरीर तो आज नहीं तो कल मिट्टी में मिलना ही है। बात रही आत्मा की, तो आत्मा तो चैतन्य स्वरूप अजर अमर है, नैनम चिन्नन सहस्त्राणी नैनम धाति भाव का, तो आखिर तू शोक किस लिए कर रहा। भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन के बुद्धिवाद पर प्रहार किया, इसके बाद उपदेश प्रारंभ किया। गीता उपदेश सुनने के बाद आत्मज्ञान जब हुआ तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और उसने संग्राम किया। संग्राम के बाद बहुत दिनों तक राज्य शासन भी किया। तो आत्मज्ञान से आपका ये जो जमा जमाया संसार है जिसको आप संजो सजा रहे हैं वो बिखरता नहीं बल्कि सुधरता है, उसमें निखार आता है। तो आत्मज्ञान हमें जीवन जीने की ये कला सिखाता है। तो जो दूसरी विपत्ति है दर्शन शब्द की, दृश्यते ज्ञायते यद तद दर्शनम, मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा जो अनुभव का विषय है, जो जाना जाता है, जो जानने योग्य वही ब्रह्म आत्म चैतन्य आत्मज्ञान, वह दर्शन है। तीसरी व्युत्पत्ति आप ऐसा भी कर सकते, सप्तमी व्युत्पत्ति, दृश्यते यस्मिन तद ब्रह्मा। यस्मिन कार्ते जिसमें ये पूरा प्रपंच दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा, जिसमें इस प्रसादी का ज्ञान हो रहा, जिसमें प्रीति भय आदि हो रहे, वह है ब्रह्मा। परम पूज्य सुनाम धन्य अखंडानंद महाराज के एक जगह लिखा मिथ्या की परिभाषा, बहुत संक्षिप्त सहज भाषा में, स्वाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। हालांकि अद्वैत सिद्धिकार ने 5 परिभाषाएं की, खंडकार ने 11 किया, चतुष्कार ने 16 परिभाषा किया कि मिथ्या शब्द क्या है, पर पूज्य स्वामी ने इतना सहज कहा कि स्वाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। बस जो स्व के अधिकरण में जिसकी प्रतीति हो, भासमानता, उसका नाम मिथ्या है। ये जो प्रपंच है ना, इस प्रपंच को भले ही हम समझने समझाने की भाषा में कह देते झूठा, पर झूठा नहीं कहना चाहिए, झूठा है भी नहीं। और संस्कृत के किसी भी वाङ्मय में झूठा शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक जगह इसका कटाक्ष भी किया कि प्रपंच को झूठा मान लिया जाए तो सूक्ति रूप्य और मोदकादि भक्षण में क्या अंतर। सीपी में जो चांदी दिखाई दे रहा है और जो आप थाली सजाकर भोजन करते हैं मोदक आदि, उन दोनों में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं, मिथ्या तो वो भी है। इसलिए मिथ्या शब्द की परिभाषा है जो पारमार्थिक सत्ता से भिन्न हो, जो त्रैकाल्य अबाध्य न हो, उसका नाम मिथ्या है। जो व्यवहारिक हो, काम चलाऊ हो, तो थोड़े दिन के लिए हो, जो परिवर्तनशील उसका नाम मिथ्या है। तो स्व मतलब चैतन्य ब्रह्म, उसी अधिकरण में पूरे प्रपंच की प्रतीति हो रही है। तो स्वाधिकरणे भासमानत्वम का मिथ्यार्थ है, तो जिस अधिकरण में ये पूरे प्रपंच का दर्शन हो, ज्ञान हो, विषय का अनुभव, उसको कहते दर्शन मतलब अधिष्ठान चैतन्य। अधिष्ठान चैतन्य में ही सारा प्रपंच आरोपित है। एक साधारण साधवी एक दिन सपना देखा, सपने में वो देख रहा कि मैं बड़ा भारी राजा बन गया, लोग चारों तरफ हमारी चल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सोने का सिंहासन है, चमर डुला रहे हैं, वाहवाही कर रहे, बड़ा खुश। थोड़े दिन के बाद देखा सपने में कि हमारे दस दस पुत्र हो गए, बड़ा यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गया, सपने बड़ा खुश हुआ। जैसी जगह वैसी वही छोटी सी दुकान में जाके व्यापार। अब उसकी आदत पड़ गई कि हर दिन सपने में जाए देखे। एक दिन संयोग से घर में कुछ डाकू आ गए, डाकुओं ने उस आदमी के पुत्र को मार दिया और सारा धन लूट के ले गए। पत्नी तो छाती पीट कर रोने लगी, हाय मेरा सब कुछ लूट गया, बेटा मारा गया, धन चला गया, अब मैं क्या करूं, उस भगवान को भी दिखाई नहीं दिया और कोई नहीं, वही बचा। छाती पीट कर रोने लगी, पर जो पति था बिल्कुल प्रसन्न, कोई चिंता नहीं। पत्नी को बहुत बुरा लगा, उसने कहा तुम्हारा पाषाण वज्र के समान हृदय है, जो जवान बेटा मारा गया, धन चला गया, तो रोता भी नहीं, कैसा आदमी। उसने कहा कि मैं रोऊं तो सही, पर बता किसके लिए रोऊं। कुछ किसके लिए, अरे बेटे के लिए रोना चाहिए, धन के लिए रोना चाहिए, सारी दुनिया रोती है। उस आदमी ने कहा कि मैंने परसों सपना देखा, बड़ा भारी राजा हो गया, दस दस पुत्र थे, सिंहासन पर बैठा हुआ था, सब जगते ही लूट गया, तो उन स्वाप्निक पुत्रों के लिए रोऊं, सोने के लिए कि ये जो एक बेटा के लिए। उसने कहा कि वो तो सपना था, उसके लिए क्या रोना है, और कोई रोने की बात है, सपना तो कुछ भी होता है, ये तो जागृत था, जीता जागता था बेटा। उस आदमी ने कहा देवी ये भी एक सपना ही है, वो चार घंटे का सपना था और ये 40 वर्ष के सपने हैं, अंतर इतना ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो उस ब्रह्माधिकरण में सारा प्रपंच की प्रतीति हो रही। आत्म ज्योति हमारे शरीर से जुदा हो जाए तो आप कोई व्यवहार नहीं कर सकते। जब तक आत्म चेतन हमारे शरीर में है तभी तक हम सारा व्यवहार करते हैं कि हमारे पिताजी हैं, गुरुजी हैं, माताजी हैं, पति पत्नी है। आत्म ज्योति की जुदा होते ही अधिष्ठान चैतन्य के, विशिष्ट चैतन्य के, ये शरीर स्व हो जाता है। इसलिए कहा कि यस्मिन दृश्यते भुज्यते इति तत् ब्रह्म दर्शनम, जिसमें सारा प्रपंच भाषित हो रहा वही दर्शन है, वही ब्रह्म है। तो दर्शन शब्द का हमने दो चार व्युत्पत्ति किया, वैसे बहुत व्युत्पत्तियां होती है समय की सीमा को देखते हुए। तो जो दर्शन है, अब इस दर्शनों में सर्वप्रथम चारवाक दर्शन के स्थान आता है, तो चारवाक भी दर्शन संज्ञा को जो प्राप्त किया तो उसका भी कुछ रहस्य है। हमारे यहां के चारवाक में और पश्चिम जगत के चारवाक में बड़ा भारी अंतर है, एक नहीं समझना भाई। अपने यहां का चारवाक तो कहता है, कम से कम इतना तो कहता है ना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। चारवाक शब्द का अर्थ होता है अच्छा जिज्ञासा आपने किया। चारु वाको ये शांति चारवाका, चारु बहुत सुंदर, जो हम लोग गणपति भगवान की स्तोत्र में कहते हैं ना, चारु फल भक्षणम, कपित चारु फल भक्षणम गजाननम के बाद, चारु बहुत सुंदर को, जिसकी बातें सुनने में, सुनने के बाद मनोराज्य करने में बड़ी अच्छी लगे, वे चारवाक कहलाते हैं। तो उनका जो दर्शन है कि ऋणम कृत्वा घृतम पे वे कहते हैं, चाहे ऋण लेना को पश्चिम से ऋण लेते जाओ, परंतु घृतम पिवेत, घी पी के शरीर को स्वस्थ रखो, ताकि मौका पड़ने पर शत्रुओं को भी देखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर धर्म का अनुष्ठान किया जाए। भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम्, कि शरीर के भस्म होने के बाद न कोई आता है न जाता है, ये तो अपना चारवाक कहता है कि शरीर ये धर्म का साधन है, इसका देह पार्थी मोक्ष है, इससे अधिक कुछ भी नहीं, सब शरीर ही है, यही भोग यही मोक्ष, इसको बढ़िया स्वस्थ रखो। पर वो पश्चिम का चारवा कैसा नहीं कहता, वो तो बोलता है ऋणम कृत्वा असुराम पिबेत, अंतर है कि दोनों बताओ, वो बोले चाहे ऋण करना पड़े पर बोतल जरूर लेना। ये तो धर्म के साधन रूप से कहते ना शरीर को, अपने आप ही कहा कि धर्म का ये शरीर साधन है, क्योंकि तो बिना शरीर के आप न धर्म कर सकते, न अर्थार्जन कर सकते, न मोक्ष की साधना कर सकते। तो चारवाक प्रथम दर्शन है, यह भी इसलिए दर्शन संज्ञा को प्राप्त हुआ, इसमें भी रहस्य छिपा हुआ है। जिस प्रकार से कोई मान लो देहात का किसान हो, अब उस किसान को समझाना है हमें वेदांत परमात्मा भगवान को, अब उसको बोलो जीव ब्रह्म ही बना पर एक ब्रह्म में अधिष्ठान चैतन्य।